सुप्रभात। FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक्षम बंद 1948 के आषार माह की तिथि 15 तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए। हम हाजिर हैं विविध भारती के पटना केंद्र पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभी से लेकर 11:10 तक। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजने को एक कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आज का चिंतन, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। अर्थात समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए और बात करना चाहिए। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 241। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 से हमें राही प्यार की। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा।

8:30 सुबह चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता परीक्षित साहनी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनेगा, प्रस्तुति तेज श्री कामले। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे से सुनिए सुरीला सफर।

2 बजे दोपहर त्रिवेणी 2:30 से सदाबहार नगमे सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली दिन में 3 बजे से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनेगा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देउलकर से ममता सिंह की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5 बजे छायागीत। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम आपको फिर से याद दिला दें श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से आज होगी फिल्म आपकी कसम। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट, लेखक मदन बिहारी शरणदीप, निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 आज के फनकार आपको याद दिला दें अभिनेता परीक्षित साहनी पर केंद्रित होगा प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे छायागीत प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार, पंडित रोनू मजुमदार विविध भारती के स्टूडियो में हैं और सुर लहरियां जैसे तैर रही हैं और हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं इनकी बातें और बांसुरी की तान। दादा, हमारे मन में एक बात आ रही है कि आपने बहुत सारे फिल्मी गानों में बांसुरी बजाई है
2: जी।
1: तो उन फिल्मी गीतों का हम क्यों न चर्चा करें।
2: जैसे मैं आर डी बर्मन के पास गया तो लव स्टोरी से तो मेरी एंट्री हो गई
1: जी जी।
2: तो उसके बाद अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, किशोरदा के साथ और ऊंचे

0: झिम झिम झिम तारा, ये गाने में भी मेरा सोलो
1: वाह,
0: है।
1: इसमें बांसुरी पर आप अगर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको तकलीफ देते चल रहे
0: मुखड़ा, अंतरा तो याद नहीं है, मैं मुखड़ा
1: हैं।
0: सुनाता
1: हाँ
0: हूं।

0: वाह।
1: इसमें शुरू में फ्लूट का आलाप है। किशोरदा आते ही सिंगर बूथ की तरफ जाते थे, कहीं देखे बगैर।
0: अच्छा।
1: थोड़ा आगे गए और फिर पीछे मुड़ के मेरे पास आ गए। मुझे बोले कि अच्छा, मेरी प्रैक्टिस स्टूडियो में भी चलती रहती थी।
0: जी जी।
1: तो मैं अपना पीलू बजा रहा था, तो बोलते पीलू क्यों बजा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, तू पहाड़ी बजा पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: मैंने बोला अरे बड़ा अजीब आदमी है ये। तो मैं तो था बच्चा। बोले कि एक डेट उन्होंने पूछा, समझ लीजिए 25। 25 तारीख को तू फ्री है, मेरे साथ सन्मुखानंद में बजाएगा।
0: अच्छा,
1: बच्चा ऐसा होता है कि उसको ये समझ नहीं होती कि बड़े लोगों को क्या नहीं कहना चाहिए।
0: अच्छा।
1: आज का रोनू मजुमदार होता तो नहीं बोलता। मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया। अच्छा, थे तो पिता के उम्र के, मगर फिर इंडस्ट्री में दादा दीदी ये चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: राज जी, दिलीप साहब, रफी साहब, किशोरदा, ऐसे उसको संज्ञा दी जाती है। तो किशोर कुमार सुपरस्टार को मैंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाता हूँ। मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, स्टूडियो के अंदर ठीक है। कहाँ तो नाराज होके बोल सकते थे पंचम दास से, अरे ये बड़ा लड़का बदतमीज है, इसको निकालो बाहर। वो बजाएगा नहीं तो पूजा कैसे होगा है? देख मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है।
0: क्या बात है।
1: ऐसे थे हमारे किशोरदा। बोले मेरे जैसा कंजूस, उनको ये भी मालूम नहीं था कि वो भगवान जैसा गाते हैं।
0: जी जी जी।
1: ऐसा कोई गा ही नहीं सकता।
0: जी जी।
1: तो दुर्गा पूजा बंगालियों का होता है शिवाजी पार्क में, वो बंगाल क्लब का, बंगाल क्लब के लिए वो गा रहे थे।
0: जी।
1: जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने तुरंत पांव पकड़ लिया, दादा मुझे माफ करिए मैं बजाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा।
0: जी जी।
1: तो किशोरदा के साथ मैं घर गया फिर गौरीकुंज। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे, अपने माँ के, गौरी प्रसन्न गांगुली।
0: जी जी। अच्छा। उनकी माँ का नाम,
1: उनकी माँ का नाम, तो माँ के नाम से ही वो बंगला बनाया। फिर वहां पे चलती का नाम गाड़ी वाला, वो जो गाड़ी है वो वहां पे आज भी खड़ी है। वो एक एक समझिए ना, एक पुराने जमाने की याद ताजा करता है। तो अगर तुम ना होते, ऊंचे लोग, और एक गाने में लता जी याद करती है, जो लता जी मेरे साथ पीले कलर का फोन लेके जो खड़ी है, वो जो फोटो आप लोग देखते हैं बहुत फेमस, जो फोटो मेरा है जो मैं उनके जन्मदिन में हरदम पोस्ट करता हूँ।
0: जी जी।
1: तभी भी वो याद कर रही थी मेरे स्टूडियो में आके, ट्रायो डिजिटल मेरा स्टूडियो है
0: जी।
1: तो वहां आई तो बोल रही थी कि तूने जमीन आसमान में जो फ्लूट बजाया था वो आज भी याद आता है रोनू, आजकल

0: ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं होता। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी, खुद के लिए नहीं,
1: और
0: संगीत के लिए।
1: संगीत।
0: क्या ये जमाना है, क्या हो रहा है, ये कटपेस से कैसे चलेगा। मैं आपको वो पीस सुना रहा हूं
1: जी
0: जो
1: जी
0: जमीन
1: जी
0: आसमान का
1: जी
0: में मैंने
1: स्वागत।
0: देखिए अजीत भाई, ये वही है बांसुरी वाली बात की, रे को साकर के मुझे बजाना पड़ेगा तो वो आप सिर्फ बायां बजा देंगे इसमें।

0: वाह
1: मेरी आपसे गुजारिश है,
0: जी
1: ऐसा दीदी ने इसको गाया है, प्लीज ये गाना जरा आप श्रोताओं को सुनवा दीजिए,
0: जी
1: फिर कुछ बातें मैं अगले एपिसोड में बोलूंगा।
0: जी सुनवाते हैं यही गीत।

0: जी गाना भी अद्भुत है, बड़ी ऊंचे सुर में लता दीदी ले जाती हैं और
1: जी
0: आपकी बांसुरी की तान तो बिल्कुल मोहित कर देती है।
1: तारा रा रा तारा रा रा ता ता ता ता ता, मतलब इतना ऊपर के स्वरों को दीदी उसमें भी एक मेलोडी को कायम रखती थी।
0: जी,
1: कर्कशता से कोसों दूर, कर्कशता तो शायद उनको स्पेलिंग भी उसका व्याकरण भी उनको मालूम नहीं।
0: सुर कोकिला तभी तो कहा
1: जाता
0: है।
1: स्वर कोकिला, माँ सरस्वती गा रही है, क्या बात करने का, हजार राहें मैंने बजाया। मुझे एक बात कहनी है जाने से पहले, शशि जी था उस दिन, शशि कपूर
0: जी
1: और राखी जी जो इस फिल्म में है, ये दोनों उस दिन मौजूद थे।
0: अरे वाह,
1: स्टूडियो में। और शशि कपूर जी जिस तरीके से, अरे क्या बात है, क्या बांसुरी बजाते हो बंगाली बाबू,
0: वाह,
1: तो जैसे जिंदा दिल वो फिल्मों में दिखते हैं, जितनी खूबसूरत उनकी हंसी, इतने ही खूबसूरत वो ऑफ द स्क्रीन भी वैसे ही थे। वो और देव साहब, तो देवानंद के साथ भी मैंने काम किया
0: जी।
1: आप सोचते होंगे इतनी तो मेरी उम्र नहीं है
0: जी।
1: कि मैं, देवानंद के साथ मैंने काम किया है
0: जी।
1: आप सोचिए।
0: तो दादा, ये जो मुलाकात है आपकी इन लोगों से, इन मुलाकातों का भी जिक्र करें, लेकिन अब आज तो हम यहाँ पर
1: अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बातें बताऊंगा
0: जी। तो जी। अब आज श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 102.5 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी की रचना थी, एसटी बर्मन की तर्ज थी। आज हम इन कुछ गानों के माध्यम से याद कर रहे हैं फिल्मकार चेतन आनंद को। सुनते हैं ये गीत। ये फिल्म किनारे किनारे का गीत है, आवाज़ मन्ना डे की है।

0: किनारे किनारे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज थी। न्याय शर्मा ने इस गीत को लिखा था और जयदेव ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: अफसर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सुरैया की आवाज़ थी। नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और एस डी बर्मन ने धुन बनाई थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
7: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
8: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
9: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग इस बहुत छोटे से अंतराल के बाद।

भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फंटूश फिल्म का गाना, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, साहिल उद्यानवी के बोल थे, एसटी बर्मन की धुन थी। लीजिए अब सुनिए बावरी नैन फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है गीता रॉय और मुकेश ने।

0: बाबरी नैन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी गीता रॉय और मुकेश की। केदार शर्मा ने इस गीत को लिखा था और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? अब विको के चुनिंदा प्रोडक्ट्स एक के साथ एक मुफ्त पाए, आयुर्वेद की खूबियों को घर लाए। सोचे नहीं, आज ही खरीदे विको प्रोडक्ट्स। ऑफर सीमित समय के लिए।
1: बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है PCOD? जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
4: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाबुल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के आवाज़ों में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को, नमस्कार।

हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, हम है राही प्यार के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। साहिल उद्यानवी ने इस गीत को लिखा था, संगीतकार थे एस टी बर्मन। लीजिए अब सुनिए काला बाजार फिल्म का गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, शब्दकार हैं शैलेंद्र।

0: रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। काला बाजार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में, शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे एसटी बर्मन।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
4: नसीब इंसान का,
3: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: किनारे किनारे फिल्म का गीत आपने सुना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की थी। न्याय शर्मा ने इस गीत को लिखा था, जयदेव ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हैं राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का।

जानी मन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्श की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गाना, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया है, कैफी आज़मी ने लिखा है और मदन मोहन ने धुन बनाई है।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में ही रांझा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे और मदन मोहन ने तर्ज बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: पदरत फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और सुरेश वाटकर और साथियों की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन की तर्ज।

आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में कुदरत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था, आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये कार्यक्रम हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम इसी गाने के साथ अब समाप्त होता है। इजाज़त सविता सिंह को दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला

0: कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के

0: माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रकर्ष रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR

0: पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना

0: बहुत ज़रूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना, मिलाना, आदर, सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझसे

दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परिचाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बरसों तक ये रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते बुआ चाचा, भाई बहन, मौसी मामा, सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्यौहार, उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है। आज इनमें भी कमी आ गई है या

दोस्तों, आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फ़ोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई संदेश, संवेदना प्रकट करना, बस दे दिया उनका ये फ़र्ज़ पूरा हो गया। इनमें कितना अपनापन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से घर आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना, परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज़ पर, एक तार, टेलीग्राम, चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं, ज़रूरत से बनाने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

0: हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

मोनाली ठाकुर और मीर ब्रदर्स की आवाज़ों में आपने बागी फिल्म का गीत सुना। कुमार ने इस गीत को लिखा था और मीर ब्रदर्स ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

हाफ गर्ल फ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। यश किंग की आवाज़ में तनिष्क बागची और इरफान महमूद ने इस गीत को लिखा था। तनिष्क बागची ने संगीत से संवारा था इस गीत को।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रोचक कोहली और साथियों की आवाज़ें थीं। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं, आपका फिर से बहुत स्वागत।

पद्मावत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे AM तुराज और संगीतकार थे संजय लीला भंसाली। आज 6 जुलाई है, जन्मदिन है रणवीर सिंह का। ऊर्जावान, बेहतरीन अभिनय और अपनी अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता रणवीर सिंह को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जोशीले व्यक्तित्व और शानदार अभिनय से उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे यूं ही अपनी प्रतिभा से सिने जगत को नित नई ऊंचाइयां देते रहें। आइए उनके अभिनय के रंग समेटे एक बेहतरीन गीत सुनते हैं।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुन रहे थे। AM तुराज़न और नासिर फराज ने इस गीत को मिलकर लिखा और संगीत से संवारा शैल प्रीतेश और नितिन शंकर ने। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय सुन रहे हैं।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शाश्वत सचदेव जैस्मिन शैंडिल्स के आवाज़ों में। गीत जैस्मिन शैंडिल्स ने लिखा था और संगीत से संवारा था शाश्वत सचदेव ने। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आप सभी का। यह है

0: राजनीति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी?

0: जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज 6 जुलाई है, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का ये उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुई पाश्चर ने रेबीज के टीकेकरण का पहला सफल प्रयोग किया था। जूनोटिक रोगों के उदाहरण हैं रेबीज, बर्ड फ्लू, कोविड 19 और आदि बीमारियां, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी वैज्ञानिक का अध्ययन जारी है। इससे बचाव के उपाय हैं पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण, सुरक्षित भोजन और बीमार पशुओं की तुरंत जांच कराना। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पशुओं से फैलने वाले रोगों से हम बचे रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, समय समय पर टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और सचेत रहें हमेशा।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की आवाजों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको गीत सुनवाएंगे।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद फिर स्वागत।
1: मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर्दों किस्सा पुराना।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना की आवाज़ें थीं। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाँव में बैठने और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं, बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें, यानी उनके देखभाल के, उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। एक पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

धीमे धीमे चले पुरवैया लापता लेडीज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

0: एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम जरी हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रहे थे। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्टर
2: दोस्त मेरा भी गम ज़दा ना हुआ तीर से जख्म दिल। ये थे हमारे आज के महफिल सुखन के फनकार, और अब मैं सामईन इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज।
4: सामईन, अभी आप सुन रहे थे रेडियो मुशायरा महफिल सुखन। इसमें शिरकत करने वाले शोरा थे मोहम्मद आसिफ, इम्तियाज़ अहमद दानिश और मुअज़्ज़म अली अंसारी। निज़ामत कर रहे थे इम्तियाज़ अहमद दानिश। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

अभी आप जावेद अख्तर की लिखी ये गजल सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज में।

अभी आप गुलजार की लिखी गजल सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज में। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं खत्म होता है। जरीफ आत्मा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।

अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है रसमंजरी।

फिल्म संगीत का श्रोता हो, आज का ये कार्यक्रम आइए करते हैं शुरुआत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म के लिए गाए गाने से, जिसे आवाज दी है अनवर और सुलक्षणा पंडित ने।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए गाया गाना आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाज में। आइए सुनते हैं अभी गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है धरती।

छतरी के नीचे भी दिल भीग जाता है जब बारिश में किसी का ख्याल आ जाता है। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं श्रोताओं रसमंजरी कार्यक्रम में आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आइए सुनते हैं अब ये अगला गाना। मीत ब्रदर संजन फिएट और यासिर देसाई की आवाज में, फिल्म का नाम शिमला मिर्च।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

जानवर फिल्म का ये गाना था जिसे आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और मनहर उदास का गाया हुआ। कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के युगल स्वर में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया 2 से।

अभी आप सुन रहे थे गीत, कलाकार थे अनूप कुमार। इसी के साथ आज का हमारे कार्यक्रम सुगम संगीत का समय अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म के लिए गाया गाना, जिसे आवाज़ दी थी उदित नारायण और साधना सरगम ने। ये गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं धड़क 2 फिल्म के लिए, दर्शन रावल और जनिता गांधी की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गाना था जिसे हमने लिया था फिल्म लोफर से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी के पटना केंद्र से। एक सूचना सुनिए, आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है दांतों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं, कारण और निदान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे दिनांक 15 जुलाई सन 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222-500 एवं दूसरा नंबर 0612-4026-349। फ़ोन नंबर कृपया एक बार फिर से मिला लीजिए 0612-2222-500 और दूसरा नंबर है 0612-4026-2349। रिकॉर्डिंग की तारीख दिनांक 15 जुलाई 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गाना, मित्राज का गाया हुआ, फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर का गाया दुगाना है, फिल्म का नाम है फ़र्ज़।

रईस फिल्म के लिए श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर का कहे गाना। कार्यक्रम में लीजिए पेश है बाबुल सुप्रियो के साथ अलका याग्निक का गाया गाना। फिल्म है हम तुम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार है रामचंद्र प्रसाद सिंह और नीतू कुमारी नूतन।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे रामचंद्र प्रसाद सिंह और नीतू कुमारी नूतन।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफर। आज का सफर हम तय करेंगे संगीतकार पंडित रविशंकर के साथ।
1: सुरों का सफर।

सितार के तारों की ये मधुर ध्वनि सुन रहे हैं ना आप। कुशल कलाकार की चपल उंगलियों के प्रभाव ने आपको जरूर बांधा होगा। सितार पर बिजली की तरह दौड़ती ये उंगलियां हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकार पंडित रविशंकर की, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी और उसे वैश्विकता प्रदान किया। ऐसे विराट अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के स्वामी रविशंकर ने बहुत थोड़ी सी ही फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो दिया वो अविस्मरणीय है, कालातीत है।

1920 में बनारस में जन्मे रविशंकर का पूरा परिवार कलाकारों का रहा है, जिनमें उनके भाई उदय शंकर और भतीजे आनंद शंकर प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और संगीतकार रहे हैं। सुप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से रविशंकर ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया और आगे चलकर उन्होंने उस शिक्षा का उपयोग अपनी कला को निखारने में किया। रविशंकर मूलतः प्रयोगों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय रागों में नए नए राग बनाकर प्रयोग किए, बल्कि पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय संगीत को मिलाकर नया फ्यूजन ही पैदा किया।

हिंदी फिल्मों में रविशंकर का प्रवेश हुआ। चेतन आनंद निर्देशित 1946 की नीचा नगर और ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित धरती के लाल जैसी यथार्थवादी फिल्मों से, बल्कि नीचा नगर को तो 1947 में फ्रांस के फिल्म समारोह की 11 प्रविष्टियों में स्थान हासिल करने का गौरव भी प्राप्त हुआ था।

ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पथेर पांचाली में पंडित रविशंकर ने सितार बजाया था और डॉक्टर इकबाल की प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन भी

लोगों ने ही तैयार की थी। ये भी एक तथ्य है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म अनुराधा के संगीत के लिए पहले लता से आग्रह किया था। लता के तैयार नहीं होने पर उस समय के चोटी के संगीतकार शंकर जयकिशन इस फिल्म में रचनात्मक संगीत की संभावनाओं को देख अपनी लाखों की फीस कम करके 20,000 रुपए में ही संगीत देने को इच्छुक थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने इसका जिम्मा पंडित

भिन्न भिन्न शास्त्रीय रागों पर सितार के अद्भुत प्रयोगों के साथ लता के चार अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय गीत आज भी मकबूल हैं।

भैरवी में सावरे सावरे की सुरीली तान, तिलक कामोद में जाने कैसे सपनों में की मीठी चुभन, माझ खमाज में कैसे दिन बीते की अंतर्वेदना, और जंस मोहिनी में हाय रे वो दिन का उद्गार, क्या कभी भुलाया जा सकेगा।

0: अनुराधा में जहां शास्त्रीय संगीत का परिष्कार था, वहीं 1963 में आई गोदान में प्रेमचंद के अमर उपन्यास की कथा भूमि को अवधि और पूर्वी लोक संगीत का इतना सुंदर स्पर्श रविशंकर ने दिया कि फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई, लेकिन इसका संगीत अमर हो गया।
1: अरे पुरवा के झोंकवा में

इसी फिल्म का एक अन्य गीत तिलक कामोद के सुरों में बंधा चैती है, जिसमें बांसुरी और सितार के कोमल आरंभ के बाद मुकेश के स्वर से अभिभूत करता विषाद का अद्भुत लोकरंग उभरता है।

गोदान फिल्म के संगीत में ग्रामीण संगीत के हर रूप का माधुर्य धड़कता छलकता दिखाई देता है। शहनाई, सितार, बांसुरी और घुंघरू के साथ प्रकृति के चंचल रूपों का अवतरण राग माझ खमाज के लोक रूप में जाने कहां जिया मोरा डोले रे।

बीच का समय रविशंकर ने शास्त्रीय संगीत में राग प्रयोगों और पाश्चात्य फ्यूजन के लिए ही दिया। वर्षों बाद गुलजार निर्मित फिल्म मीरा में उन्होंने संगीत दिया, लेकिन इसके लिए वे वाणी जयराम को लेकर आए।

1999 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत रविशंकर संगीत जगत में हमेशा सक्रिय रहे। उनकी आत्मकथा रागमाला के नाम से प्रकाशित हुई है। इन सभी उपलब्धियों के समानांतर यदि सिने संगीत की बात की जाएगी तो रविशंकर की धुनों के लिए गोदान और अनुराधा के गीत ही सबके जुबां पर आएंगे।

फिल्म तो असफल रही ही, इसके गीतों को भी अधिक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन इसके लिए वाणी जयराम को सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार जरूर मिल गया। आगे चलकर रविशंकर ने ब्रिटिश पॉप ग्रुप बीटल्स के साथ फ्यूजन का काम किया। यहूदी मेनुहिन के साथ

0: सुप्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की मनमोहक धुनों के साथ आज का सफर यहीं तक। अगली कड़ी में हम पेश करेंगे एक और मकबूल संगीतकार के सफरनामे को। तब तक के लिए डॉक्टर किशोर सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुरों का सफर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़

0: से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। विषय है मानसून में जनजीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के लिए कानूनी जिम्मेदारी किसकी। भेंटवार्ताकार हैं सेवानिवृत्त जज किशोर प्रसाद, भेंटकर्ता हरिंद्र आजाद।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कानून की बातें में। मैं हूं हरिंद्र आजाद और आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून में जनजीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के लिए कानूनी जिम्मेदारी किसकी। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री किशोर प्रसाद जी। आप सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। श्रोताओं, अभी जो ये समय चल रहा है मॉनसून का समय है, हालांकि अभी थोड़ी बारिश कम हो रही है, लेकिन बारिश और बारिश के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जल जमाव की समस्याएं, उससे कनेक्टेड बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिससे हम अपने जीवन में जूझते हैं। तो इसको लेकर के हम कैसे कानूनी मदद पा सकते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, कौन कौन सी एजेंसियां इससे संबंधित हैं, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले जज साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: तो हम बात करते हैं सबसे पहले सर जल जमाव को लेकर के। हम देखते हैं कि कई दफा कई जगह सड़कों पर जल जमाव हो जाता है, गड्ढे होते हैं और उससे कहीं ना कहीं कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें जान जाने तक की खतरा या आदमी मेजर डैमेज हो।
3: हर बार तो सुनने को मिलता ही है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, नगर निगम क्षेत्र में हो या बड़े शहर में हो
2: जी,
3: कि मैन होल खुला रह गया या नाला जो है वो कहीं पे
2: एग्जैक्टली
3: फेंसिंग नहीं है, उसमें गाड़ियां डूब गई या कोई गाड़ी बाइक लेते हुए उसमें डूब गया
2: जी,
3: जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। मैन होल खुला रहने से यदि जल जमाव है और पता नहीं चलता है और उस पर कोई इंडिकेशन पहले से
2: जी
3: नहीं है, तो उसमें वो गिर जाने की वजह से मौत तक भी हो जाती है। तो ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम के पदाधिकारियों की है, उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे सीवरेज सिस्टम है
2: जी,
3: जो मैन होल है वो तो सीवरेज सिस्टम में आ जाता है,
2: सीवर का ढक्कन खुला हो
3: जी, तो वो मैनेजमेंट है उन लोगों को ध्यान देनी चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि बाकी शहरों की बात तो और अलग रही, लेकिन अपने बिहार में देखते हैं कि इस सब चीज़ों पे मेंटेनेंस

0: पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो मेंटेनेंस उस
1: जी
0: ढंग से कई बार नहीं हो पाती है,
1: जी
0: जिसकी वजह से ये समस्याएं आती है और इससे लोगों की जान तक भी चली जाती है। अब जैसे जान चली गई तो किसी का नाहक ये जान चला गया, तो जो हमारा संविधान है
1: जी
0: लोगों की लाइफ और लिबर्टी को गारंटी करता है। लाइफ और लिबर्टी बहुत बड़ी चीज़ है और किसी की ज़िंदगी यदि चली जाती है तो एक बहुत बड़ी बात हो गई
1: जी
0: जो कि सिक्योर्ड होना चाहिए, और हमारा एक वेलफेयर स्टेट है जिसके तहत इस चीज़ों की गारंटी है। लेकिन यदि ऐसा किसी के मेंटेनेंस न करने पे या ध्यान न देने की वजह से ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है।
1: एग्जैक्टली
0: तो
1: तो हम यही सर जानना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के मामलों में किसी के साथ कोई दुखद हादसा होता है तो कौन सी एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनके जिम्मेदारी का निर्वहन अगर बखूबी नहीं होता है तो यह संबंधित व्यक्ति जो पीड़ित है उसके लिए क्या उपचार हैं और कैसे वो अपने उपचार को प्राप्त करें।
0: जैसे मैन होल खुला रहने की जहाँ तक बात है, ये तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में है, नगर निगम के
1: जी
0: क्षेत्रों में या जहाँ पे नगर पालिका है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके तहत आती है। तो यदि जो पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है और उसका डिलीवरेटली यदि कहीं पे नेग्लिजेंट है वो,
1: जी
0: तो उस नेग्लिजेंसी के लिए यदि डेथ हो जाती है तो हम क्रिमिनल लाइबिलिटी भी उसकी बनती है, लेकिन वो प्रूफ करना पड़ेगा।
1: जी
0: वो यदि प्रॉपर प्रूफ हो जाता है तो अब तो हमारा कहता है आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई है, उसकी धारा 106 है
1: जी
0: जो कि डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस या
1: जी
0: ओमिशन की वजह से यदि ऐसा होता है, तो जो ड्यूटी मैन नेग्लिजेंस है या ओमिशन है उसकी वजह से ऐसा हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदारी उसके लिए
1: तय होगी।
0: बनती है।
1: जी
0: हाँ, लेकिन इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर सारी चीज होगी, और यदि वो प्रूफ होता है तो वो उसके ऊपर बनता है। दूसरी चीज होती है कि जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ चली गई और वो लाइफ अर्निंग मेंबर है, तो उसकी फैमिली है, उसका क्या होगा? तो
1: जी
0: जो उसकी अर्निंग खत्म हो गई तो उसके लिए फिर उसको एक सिविल सूट में जाएगा, तो डैमेज जिसको हम टॉर्ट भी कहते हैं, सिविल रॉन्ग भी कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में हमको हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट फाइल करके भी जाना पड़ सकता है, तो वहाँ से भी डैमेज क्लेम कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी उसके लिए डैमेज के लिए फाइल कर सकते हैं, और क्रिमिनल लाइबिलिटी तो अलग है ही है।
1: जी जैसा कि
0: और
1: आपने बताया कि बीएनएस की धारा 106 के
0: हाँ,
1: तहत
0: 106(1) है जिसके धारा, इसमें 5 साल तक की सजा भी है
1: जी,
0: इस केस में, तो वो उसको यदि प्रूफ होने पे ऐसा हो सकता
1: तो सर
0: है।
1: इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है।
0: बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके साथ घटना घटी, तो मान लीजिए शहरी क्षेत्र है तो सीसीटीवीज हैं, कैमरा लगा हुआ है, या मान लीजिए किसी ने उसको
1: देखा
0: कैप्चर
1: है
0: भी किया हो,
1: जी
0: देखा भी है, विटनेस भी है, और मान लीजिए वो बॉडी वहाँ से रिकवर भी होती है, तो कहाँ से निकले, फिर उसका पोस्टमार्टम भी होता है, तो डेथ का काउज भी आएगा। जैसे कोर्ट की जो प्रक्रिया होगी तो एविडेंस के आधार पे होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो एविडेंस से प्रूफ होता है, जैसे पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट उसकी जो भी आएगी उससे उसकी डेथ का काउज का पता चलेगा।
1: जी
0: अब प्लस एविडेंस है, विटनेसेस हैं, तो वो सारा चीज कोर्ट के सामने, वो एविडेंसरी वैल्यू जो एविडेंस सामने आएगा उसके आधार पे वो डिसाइड हो सकता है।
1: जी जी
0: बाकी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की नेग्लिजेंस रही है, उसने ध्यान नहीं दिया, जैसे मान लीजिए मेन होल खुला था जिसके लिए मान लीजिए किसी ने शिकायत किया, टेलीफोनिक शिकायत किया या लिखित में भी दिया, एसएमएस भी दिया, दैट विल बी ऑल्सो काउंट एज इन रिकॉर्ड,
1: जी
0: कि इसके बावजूद भी वो नहीं अपने आप को दुरुस्त किया और फिर भी नेग्लिजेंट रहा, तो वो तो नेग्लिजेंस उसके पार्ट में तो आएगा ही आएगा। तो
1: मतलब यह भी एक
0: डिपार्टमेंट,
1: प्रूफ हो सकते हैं।
0: हाँ
1: जी
0: डिपार्टमेंट चाहे तो उसको डिपार्टमेंट इंक्वायरी में भी उसके अगेंस्ट में चला सकता है।
1: हाँ सर, और इस मामले में आपने बताया कि डैमेज का भी प्रावधान है, तो
0: हाँ
1: ये डैमेज कैसे मिलता है और डैमेज प्राप्त करने के लिए जो विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति है, उसे या उसके परिजन को क्या करना
0: देखिए,
1: होगा।
0: इसका बेसिक चीज ये है कि जैसे किसी की जिंदगी चली गई
1: जी
0: तो वो जिंदगी तो दोबारा लौटती नहीं है,
1: जी
0: तो एक उसका ऑल्टरनेटिव में केवल मुआवजा ही बच जाता है, जो उनके स्वजन हैं, जो उनके हेयर्स हैं, तो उनको वारिस इंसान लोग हैं उनको मिलता है, तो उनको पाने के लिए जैसे सरकार ने ऐसे स्थितियों में कुछ मुआवजा का प्रावधान बना के रखा है, जैसे आपदा प्रबंधन में भी ये सारी चीज़ें हैं, या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के थ्रू भी ये सब चीज़ें आती है, तो वो मुआवजा तो उनको मिल जाता
1: जो
0: है।
1: फिक्स राशि है
0: हाँ,
1: मुआवजा की
0: फिक्स
1: वो
0: राशि
1: मिल
0: है
1: जाएगा।
0: वो
1: जी
0: मिल जाती है, लेकिन यदि कुछ और डैमेज जैसे मान लीजिए अर्निंग मेंबर है या

0: अली जो सर्विस में थे, और वो सर्विस उनकी कई सालों की थी, और अभी वो रहते तो उनका परिवार ज़्यादा सुखी और मतलब खुशहाल
1: बेहतरीन
0: होता।
1: तरीके से
0: हाँ,
1: रहता जी।
0: बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीता, उसके बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते, लेकिन किसी की वजह से ऐसा हुआ है तो उसके लिए वो डैमेज क्लेम करेगा, तो उसके लिए या तो रिट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा,
1: जी,
0: तो वो वहाँ पे प्रूफ
1: तो
0: करना
1: उसके
0: पड़ेगा।
1: हिसाब से कोलेटरल डैमेज
0: हाँ,
1: काउंट होगा।
0: तो
1: तो ये तो हुई श्रोताओं जल जमाव से संबंधित, या मैन होल खुला हुआ है मॉनसून सीजन में बरसात के दिनों में अगर कोई मिसहैपनिंग होता है। अब हम फिर बात करते हैं, सपोज कहीं बिजली के खंभे में बरसात के दिनों में कोई बच्चा खेलते हुए गया, चिपक जाता है, या कोई बड़ा ही आदमी करंट लगने से उसकी जान चली जाती है, तो ऐसे में क्या मुआवजा के प्रावधान है और कौन सी एजेंसी इसके लिए लाइबल
0: मैं
1: होगा?
0: उसको बताता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में यदि तार गिरा हुआ है, लाइव
1: जी
0: वायर है,
1: जी
0: और उससे जिससे करंट लग जाने से कोई झुलस जाता है या इंजरी हो जाती है या डेथ भी हो जाती है, तो वैसे केसेस के लिए बिजली विभाग का अपना रेगुलेशन है, उसके लिए कंपनसेशन का प्रावधान है, वो प्रूफ होना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए क्वांटम ऑफ कंपनसेशन है वो तय है।
1: जी
0: मृत्यु के केस में 4 लाख होती है,
1: जी
0: यदि मान लीजिए उनकी अपंगता जो है 60% से अबव होती है तो वैसे केस में 2 लाख रुपया हो जाता है, और यदि 40 to 60% यदि उनकी अपंगता होती है वैसे केस में 60,000 होती है। तो इसी तरह से जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, यदि 1 सप्ताह से ज़्यादा होता है तो 15,000 मिलता है, यदि 1 सप्ताह से कम है तो 5,000 का
1: जी
0: मिलता है
1: तो सर
0: वो।
1: ये तो हुई मुआवजा की राशि। अब
0: हाँ,
1: इस मुआवजा की राशि को पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति या उसके संबंधित लोगों को क्या करना होता है, प्रक्रिया क्या है?
0: उसमें प्रावधान दिया हुआ है, वो जो बिजली विभाग का गजट है
1: जी
0: 2018 का, उसी में जो रेगुलेटरी कमीशन है उसी का रेगुलेशंस है,
1: जी
0: तो उसी में ये प्रावधान दी गई है, और एनेक्शन 1, 2, 3 फॉर्म का है। तो उस फॉर्म में पहले सबसे पहली चीज़ होती है कि ये सूचना देनी पड़ती है,
1: जी
0: तो बिजली विभाग का एक उसमें पदाधिकारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर होते हैं,
1: जी
0: तो उनको देना पड़ता है, और वो आके इंक्वायरी करते हैं, अपनी इंक्वायरी 15 दिन के अंदर में सबमिट करता है, और फिर उसी में प्रावधान है कि रिपोर्ट सबमिट हो गई तो उसके 30 दिन के अंदर में इस पे उसको डिसीजन लेना होता है
1: जी
0: प्रबंधन को। और फिर यदि ऐसा है, ये प्रूफ हो जाता है कि उसी की वजह से, करंट की वजह से या इसके
1: जी
0: डैमेज मतलब नेग्लिजेंस की वजह से ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कंपनी है उसको वो पे करती है। जैसे मान लीजिए कि बिजली कंपनी जैसे बिहार में दो
1: जी
0: है,
1: नॉर्थ
0: नॉर्थ
1: बिहार
0: बिहार
1: साउथ
0: और
1: बिहार
0: साउथ
1: जी
0: बिहार, तो ये गवर्नमेंट के अंदर में है। समटाइम्स जैसे झारखंड जाएंगे तो वहाँ पे जो लाइसेंसी है वो लायबल होगा,
1: जी
0: तो या उसका जो मैनेजमेंट है वो लायबल होगा, और उसके द्वारा उसका पेमेंट होगा। तो फॉर्मेट में भर के जाता है, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी हो जाने के बाद फिर कंपनसेशन का सारा डिसीजन होता है, फिर उस पर मिल
1: मतलब
0: जाता है।
1: पीड़ित के निकटतम आश्रित को एक सेट फॉर्मेट है, उसमें भर के आवेदन देना होता है
0: हाँ
1: और उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी और फिर आपको जो मुआवजा की
0: हाँ
1: राशि तय
0: उसकी
1: होगी
0: अपने
1: मिल
0: इंटरनल
1: जाएगी।
0: इंटरनल व्यवस्था है,
1: जी
0: वो लोग अपना खुद इंक्वायरी करते
1: तो
0: हैं उस।
1: सर अब हम लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि इस मौसम में हम लोग देखते हैं वज्रपात भी बहुत होते हैं, और वज्रपात से भी अपने यहाँ जो बिहार क्षेत्र है इधर इसको लेकर के थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव इलाका
0: हाँ,
1: है
0: हर साल
1: और
0: तो
1: हर साल कई लोगों
0: वज्रपात
1: की जाने जाती हैं, तो
0: मतलब,
1: इसमें भी कुछ मुआवजा के प्रावधान
0: हाँ
1: हैं, क्या है, कैसे लोगों को मुआवजा मिलती
0: इसमें
1: है?
0: वज्रपात में भी है, चूंकि हर मानसून के सीजन में इस तरह की चीजें होती
1: जी
0: रहती है, तो उसमें भी सरकार की तरफ से ये प्रावधान है, और वो आपदा प्रबंधन में ही लोकल आपदा उसको मान करके जो आपदा प्रबंधन की जो व्यवस्था है पेमेंट देने का, उसी के तहत तो उसमें भी मृत्यु के केस में 4 लाख रुपये का प्रावधान है।
1: जी
0: तो
1: मतलब उसके लिए भी एक सहयोग राशि सरकार ने
0: हाँ
1: बना के रखी है
0: हाँ
1: नागरिकों के
0: है
1: लिए, उसके लिए कुछ कागजात की भी जरूरत होते होंगे?
0: हाँ, कागजात के जैसे कि मान लीजिए किसी की भी डेथ होती है ना, तो जैसे डेथ हुई तो वो तो डिक्लेयर होता है हॉस्पिटल से,
1: जी
0: गवर्नमेंट हॉस्पिटल से,
1: जी
0: उसकी पोस्टमार्टम होती है, तो पोस्टमार्टम में जिस कारण से डेथ हुई है वो लिखा जाता है, तो
1: जी
0: उसका जैसे कोई ट्रीटमेंट हो गया तो मेडिकल पेपर्स भी हैं, तो वो सारे कागजात वहां पे जरूरी हो जाएगा।
1: जी, मतलब उसके मेडिकल कागजात चाहिए, साथ ही साथ उसके नागरिक होने के प्रमाण चाहिए।
0: हाँ, वो तो रहेगा ही रहेगा,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: जैसे आधार कार्ड है या मान लीजिए उसका जो
1: वोटर आईडी
0: अस्थायी
1: है। जी
0: निवास है,
1: जी
0: तो जो

0: लोकल अथॉरिटी होगी, जो पंचायत होगी, तो जिसमें सरपंच साहब होंगे, मुखिया जी होंगे, या वहाँ का लोकल चौकीदार होगा, जो थाना होगा, तो वो वहाँ सूचित करता है, तो उसके द्वारा फिर
1: अच्छा
0: हॉस्पिटल तक पहुँचाया
1: जी
0: जाता है।
1: जी
0: तो वहाँ पे जैसे डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम के लिए फिर सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ से फिर उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऑन रिकॉर्ड आ गया गवर्नमेंट के यहाँ, तो फिर उसका क्लेम बन के जाता है। तो फिर उस आधार पे फिर
1: जी
0: गवर्नमेंट के द्वारा जो
1: हाँ
0: एजेंसी हमारे हैं, ऑफिसर्स हैं, जो उस चीज़ के लिए, तो उन लोग के थ्रू।
1: तो श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारी मानसून में जनजीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से संबंधित। आपके क्या राइट्स हैं और इसके लिए कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी हैं, और जहां से आप अपनी लाभ ले सकते हैं या आपको क्षतिपूर्ति मिल सकती है? उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
0: नटसेल में
1: हाँ
0: मैं
1: जी,
0: बोलता हूँ
1: हाँ जज साहब
0: कि
1: कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी
0: इसके लिए आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी के तरफ जाएंगे तो पुलिस केस होगी, डैमेज के लिए जाएंगे तो सिविल कोर्ट में जाके डैमेज के लिए करना पड़ेगा, या ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ेगी आर्टिकल 226 में, जो कि लाइफ एंड लिबर्टी जो सिक्योर्ड होना चाहिए, और वो पब्लिक अथॉरिटी की गलती से यदि कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए वहाँ पे भी जा सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम इसका आवेदन दे सकते हैं, जहाँ से भी सारा इंक्वायरी होने के बाद वहाँ से भी कई व्यवस्थाएं हैं, जो कि कंपनसेशन वगैरह उनका डायरेक्शन हो जाता है। तो और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी है, जो गलत अफसर है या जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो नहीं ऐसा किया है, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होके उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट
1: जी
0: विभाग
1: जी
0: दे सकती है वो देते हैं।
1: क्या बात है। मतलब कुल मिलाकर इस तरह के घटनाओं में दोनों तरह की लाइबिलिटी हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है और सिविल लाइबिलिटी है, और आप जिस तरीके से डैमेज पाना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जानकारी रखने की जरूरत है, और जो संबंधित कागजात हैं उसे आप व्यवस्थित करें, संबंधित विभाग को आवेदन दें। निश्चित रूप से आपको न्याय भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। आज इस विषय पर बेहतरीन जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए श्री किशोर प्रसाद जी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप अपना बहुमूल्य समय हमें और हमारे श्रोताओं को आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। मानसून में जनजीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के लिए कानूनी जिम्मेदारी किसकी? भेंटवार्ताकार थे सेवानिवृत्त जज किशोर प्रसाद और भेंटकर्ता हरेंद्र आजाद। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण को। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

लीजिए सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है दांतों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं, कारण और निदान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 15 जुलाई 2026 को दोपहर 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-222-2500 और 0612-402-6349। रिकॉर्डिंग की तारीख 15 जुलाई 2026 और समय दोपहर 3:30 बजे। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है क्रिमिनल। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार एम एम करीम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर

0: आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। यह शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। शिविर में चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखूभाई तलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा इस महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बेहिया पीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2

0: तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती हुकूमत अब आम लोगों की शिकायतों के फौरी हल के लिए हर एक माह के दूसरे मंगल को पटना में रियासत सतही सहयोग शिविर मुनक़िद करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अहाता वाक़े संवाद भवन में होगी। ये खसूसी शिविर उन दरख्वास्त दहिंदों के लिए होगा जो ज़िला सतह पर मुनक़िद सहयोग प्रोग्राम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसले के हल से मुतमईन नहीं हैं। शिविर में मुंतखब दरख्वास्त दहिंदों की शिकायतों का जायज़ा वज़ीर आला सतह पर लिया जाएगा। दरख्वास्त सहयोग पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन की जा सकेगी। दरख्वास्त दहिंदा अपने पहले से दर्ज दरख्वास्त के हवाला नंबर और मोबाइल नंबर के ज़रिए OTP कन्फर्म करके दरख्वास्त का अमल पूरा कर सकते हैं। मुंतखब दरख्वास्त गुजार को शिविर की तारीख, वक्त और दूसरी ज़रूरी मालूमात SMS के तवसुत से भेजी जाएगी। मज़ीद मालूमात हेल्पलाइन नंबर 1100 के तवसुत से हासिल की जा सकती है। पटना ज़िला की बांकीपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा भर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। वोटिंग 30 जुलाई को होगी, वहीं वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि BJP सदर नितिन नवीन के इस्तीफा के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं BJP और दीगर जमातों की तरफ से जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने का इम्कान है। भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें कौम परस्ती और बेलौस खिदमात की अलामत बताया है। जनाब मोदी ने एक आर्टिकल में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की ज़िंदगी अखंड भारत के लिए वक्फ थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत देते हुए कहा कि वो कौम की यकजहती, सालमियत और सकाफती नेशनलिज्म के ज़बरदस्त हामी थे। पटना वाक़े BJP के रियासती सदर दफ्तर में इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सदर संजय सरावगी, तंजीमी सेक्रेटरी भीखू भाई दिलसानिया और MP रविशंकर समेत कई रहनुमाओं ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। मानसून की सरगर्मी से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे ज़्यादा 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के पेशगोई में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान दर्जे हरारत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं होगी। कौमी इम्तहानात एजेंसी NTA ने कौमी अहलियत कम दाखिला इम्तहान NEET UG इम्तहान की फ़ीस वापसी के लिए बैंक खाता डिटेल्स अपडेट करने की मुद्दत इस माह की 7 तारीख तक बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA ने इत्तला दी कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक अकाउंट्स की तफसील की तस्दीक कर दी है उनके लिए रिफंड का काम शुरू हो चुका है। समस्तीपुर ज़िला के रोसड़ा थाना इलाका के भिड़हा मोड़ के पास एक ट्रक की जद में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 औरतों की मौत हो गई जबकि दीगर 10 जख्मी हो गए। वहीं भोजपुर ज़िला के बिहटा बहिया स्टेट हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर के बेकाबू होकर पलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा ज़िले के बहेड़ी थाना हलका में 4-पहिया गाड़ी की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौत हो गई जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। अररिया ज़िला के बैरगाछी थाना इलाका के तहत NH 327E पर पुलिस ने गाड़ी जांच मुहिम के दौरान एक कार

0: कसीर मकदार में शराब के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर PO एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। एक बार और सुन लें। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएसएससी की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत

0: किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का

0: वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदुल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। किशोर कुमार और साथियों को सुनिए। फिल्म का नाम है याराना। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

लीजिए सुनिए शंकर महादेवन और चित्रा को फिल्म परदेश में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार नदीम श्रवण।

लीजिए सुनिए, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं, इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज़ से दीपा की आवाज़ से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार
1: है? बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहाँ चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
2: बिल्कुल है ना, जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसा का, तो ज्यादा ठीक है
1: जी।
2: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़ी दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो, ऐसी हाल
1: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
1: कैसे
2: तो बनेगा,
1: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना?
1: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए।
2: और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे। अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
1: जी,
2: में कहानी का दिन है। तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
1: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग 1
2: जी।
1: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने लगी
2: है कि भाई अब बजट बनाए, हाँ, खर्चा
1: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
2: कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी नहीं,
1: सही बात।
2: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती है, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मन मर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब
1: है ना?
0: होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित

0: होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए। यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज इस कहानी की पहली कड़ी।
1: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रामदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
2: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है। यह हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
1: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद्दो खाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
2: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना

0: नहीं है, लेकिन इस तरह बनठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शोहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाएं। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है,
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शोहर अब बीए में होगा? हा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपये मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेरी से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते?
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला, ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई,
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कलब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और

0: नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े और किसी तरह पहुंच जाए तो जवान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर, अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
1: सही कहती हो।
2: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
1: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती, ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
2: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली।
1: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ
0: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
1: हाँ ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
0: बहन व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
2: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
1: हाँ वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
0: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुश नसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौड़ी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता-पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एनजाइटी, टेंशन,
0: बिल्कुल
1: ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो क्यों जाते हैं?
0: बिल्कुल
1: होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय करने से कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब
1: बिल्कुल
0: आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
1: हाँ,
0: है ना,
1: इस तरह से
0: इस
1: भी
0: तरह
1: कर
0: से
1: सकते
0: बचत
1: हैं।
0: कर सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम

0: को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख के ये भी करके हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को।
0: बिल्कुल।
1: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखे ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
1: और दीपा देखो पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे या अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
1: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना वो हम बिल्कुल
1: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे ये ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है, कोई या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है

0: राशन और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना
0: जी
1: दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है।
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर।
0: हाँ।
1: तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है।
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना।
0: सही कहा।

0: और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र। वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया, क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
1: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए, इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने फलने फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियाँ, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए। और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल। सफलता, सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट

0: सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए तो हमारे एक साथी लिखते हैं, छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, और आधा चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है। नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आँच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी। तलने के लिए तेल लेना है आपको। मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें। छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें, और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा सुनहरा तल लें, और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए,

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है।
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते, हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है, है ना।
0: तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहत नमक कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है PCOD। ये PCOD क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी PCOD यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और PCOD क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। PCOD के दो है, PCOD और PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो PCOD है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और PCOD में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो PCOS है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है PCOS।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, BP हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो PCOD असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
2: PCOD एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो OPD में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है PCOD। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये 3 फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी। तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
2: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
2: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं पेशेंट, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
3: मेडिटेशन,
2: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
3: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
3: प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि PCOD यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं। उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है, और फर्टिलिटी

0: के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
1: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
0: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है। अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। हाँ,
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है कई बार, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्ट ये जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या-क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती,
1: हाँ,
0: छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इस केस में, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है,
0: जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: मुझे लगता है।
0: जी
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस ज़माने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है, प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक
0: 35%
1: ठीक कर सकते हैं।
0: 35%।
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जिसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ, लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है।

0: और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी,
1: हाँ
0: उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले
1: हाँ
0: सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: उपमा, पोहा, शीरा ये
1: हाँ
0: कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है।
1: हाँ
0: और हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियाँ से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर,
1: हाँ
0: सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर, शुगर
1: हाँ
0: एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते,
1: हाँ
0: शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे,
1: जी
0: हाँ। और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो
1: हाँ
0: प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
1: जी
0: गया,
1: जी
0: विटामिन
1: जी
0: डी ये
1: और
0: बोलते हैं।
1: विटामिन डी
0: हाँ
1: धूप से
0: सन,
1: ही मिलता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: और
0: सनलाइट, हाँ
1: आजकल धूप की बहुत कमी
0: बहुत
1: है।
0: कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन
0: हाँ
1: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
0: एसी,
1: नहीं, तो धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
0: हाँ।
1: और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, बहुत बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की संध्याकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: कौन सी बात नई है दिले नाकाम हुई, सुबह शाम से सुबह और सुबह से फिर शाम हुई। और दोस्तों, शाद अजीमाबादी साहब के इस शेर के साथ ख़त्म होता है वो इंतज़ार जो आप कल की बीती शाम से कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी रेडियो दोस्त धारिणी और अंकिता को भी बेसब्री से इंतज़ार था आपकी एक और शाम को यादगार बनाने का।
1: जी दोस्तों, आपका स्वागत है युववाणी की एक और नई कड़ी में। आपकी रेडियो दोस्त अंकिता और धारणी का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, इससे पहले कि बातों का सिलसिला शुरू हो, आइए जान लेते हैं कि आज हम बातों के पिटारे में क्या कुछ विशेष लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज कोशिश करेंगे कि आपके किताबों से थोड़ी और दोस्ती कराएं। हमारे भारत के महान आध्यात्मिक गुरु और विख्यात विचारक स्वामी विवेकानंद जी के विचार एवं जीवन दर्शन के बारे में जानें। साथ ही श्याम प्रसाद मुखर्जी

0: जी की जयंती के अवसर पर उन्हें करेंगे याद और बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित करेंगे भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
1: दोस्तों, मंडे स्पेशल सेगमेंट तकनीकी सोमवार में आज हम जानेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का बढ़ता उपयोग और इसके प्रभाव के बारे में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम ले जाएंगे आपको चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया की पुरानी गलियों में भी।
0: साथ ही जानेंगे खेल जगत की हलचल और कार्यक्रम के अंतिम मोड़ की तरफ रवाना होंगे रोचक तथ्य के साथ। तो दोस्तों, जब हम इतनी सारी बातें लेकर आए हैं तो गानों का पिटारा लाना हम कैसे भूल सकते हैं आखिर।
1: क्यों ना फिर एक गीत हो जाए। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना मूवी बेवफा से उदित नारायण की आवाज़ में। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। तो दोस्तों प्रेरणा हमारा कब से इंतज़ार कर रही है आज के प्रेरक विचार के रूप में। तो अंकिता क्या है आज का प्रेरक विचार?
1: तो धारिणी, महान आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक और दर्शन शास्त्री स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक जीना तब तक सिखाना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी जी के इस विचार से प्रेरणा लेकर जीवन के अनुभव को अपना शिक्षक मान लिया जाए और जिंदगी की हर अग्नि परीक्षा में सफल हुआ जाए।
0: बिल्कुल अंकिता, और इसी प्रेरणा के साथ दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन से रूबरू होते हैं।
1: बिल्कुल धारिणी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु, निडर और तेजस्वी थे।
0: दोस्तों उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उनकी भेंट उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। गुरु ने उन्हें आत्मज्ञान, सेवा और मानवता का सच्चा मार्ग दिखाया।
1: स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और सही दिशा प्रयत्न कराने में।
0: बिल्कुल अंकिता, और दोस्तों साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्हें ऐतिहासिक संबोधन ने उनके जो ऐतिहासिक संबोधन ने उन्हें पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराया। उनके शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों आज भी इतिहास में अमर सा हो गया है।
1: वे कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह संदेश आज के युवाओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए इन विचारधाराओं के साथ सुनते हैं अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब भी मेट से ये एनर्जेटिक सा गाना सोनू निगम और जावेद अली की आवाज़ में। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिसके पास अच्छी किताबें हैं उसके पास अच्छे दोस्त हमेशा रहते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में क्या सचमुच किताबें हमारी दोस्त बन पा रही हैं? यही जानेंगे आज, क्योंकि हमारा विषय है किताबों से दोस्ती करके तो देखो। धारिणी, जरा सच सच बताइएगा, आखिरी बार आपने अपनी मर्जी से कोई किताब कब पढ़ी थी?
1: अच्छा सवाल है अंकिता। एग्जाम वाली किताबों को तो हम सब पढ़ते हैं, और हाल फिलहाल में मेरे एग्जाम थे, मैंने पढ़े भी थे, काफी ज्यादा पढ़ा। लेकिन जब मैंने अपनी पसंद की किताब पढ़नी शुरू की, तब समझ आया कि किताबें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि इमेजिनेशन भी देती हैं।
0: बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि कहा जाता है, अ रीडर लीव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, यानी जो पढ़ता है वो एक नहीं हजार जिंदगियां जीता है।
1: वाह अंकिता, आज हम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये घंटा कहाँ निकल गया।
0: लेकिन सोचिए कि उसी 1 घंटे में किसी अच्छी किताब के कुछ अध्याय पढ़ लिए जाए, कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए जाए, तो शायद हमारी वोकैबुलरी भी बढ़े और थिंकिंग भी, और उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है।

0: पिता अगर कोई यूथ पहली बार रीडिंग की शुरुआत करना चाहे तो आप कौन सी किताबें उन्हें सजेस्ट करेंगे?
1: अरे ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक, आप छेड़ दी। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। अगर आपको मोटिवेशन पसंद है तो द अल्केमिस्ट ज़रूर पढ़िए। यह किताब हमें अपने सपनों का पीछा करना सिखाती है। अगर आप हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स एक शानदार किताब है जो बताती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ी सफलता का कारण बनती है। अगर आपको थिंकिंग और बेहतर बनाना है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पढ़िए। आज के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच की बात करती है।
0: दोस्तों, और अगर कोई फिक्शन पढ़ना पसंद करते हो आप में से, तो हैरी पॉटर सीरीज़ आज भी लाखों युवाओं की फेवरेट है और मेरी भी काफ़ी फेवरेट रह चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अंकिता आपकी भी फेवरेट रह चुकी
1: बहुत।
0: होगी।
1: मैंने सारी पूरी की पूरी बुक भी पढ़ी और पूरी सीरीज भी देखी है।
0: वाह। और साथ ही साथ इसमें फैंटेसी भी है, फ्रेंडशिप की भी बातें हैं, करेज की भी बातें हैं और दोस्तों साथ ही साथ सीख भी है। इसके अलावा द काइट रनर, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स और इकिगाई जैसी किताबें भी युवाओं के बीच काफ़ी पसंद की जाती हैं।
1: अगर आपको भारतीय लेखक में पढ़ना पसंद है तो ट्रेन टू पाकिस्तान, द पैलेस ऑफ इल्यूजन और मालगुडी डेज और विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें ज़रूर पढ़ें। विंग्स ऑफ फायर पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खुद अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। संघर्ष, मेहनत और सपनों की उड़ान, सब कुछ इस किताब में मिलता है।
0: और अभी अभी आपने जिक्र किया ट्रेन टू पाकिस्तान का, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है।
1: जी
0: और जी, और मैंने ये पढ़ा भी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसमें और मुझे मतलब मज़ा आ जाता है। हम लोग ना उस समय में वापस चले जाते हैं जो पुराना समय था।
1: हम लोग टीवी पे भी देखा करते थे, मालगुडी डेज आता था, उसके बुक्स पढ़ा करते थे।
0: जी। और दोस्तों, अगर इसी के साथ साथ आप हिंदी साहित्य की बात करें तो वहाँ भी कोई खजाना कम नहीं है। अगर आपने राग दरबारी, गोदान, गुनाहों का देवता, तमस या फिर मधुशाला नहीं पढ़ी तो यकीन मानिए आपने हिंदी साहित्य की कई अनमोल कृतियों को अभी तक नहीं जाना।
1: वैसे एक बात बताइए, क्या किताबें सिर्फ नॉलेज देती हैं?
0: बिल्कुल नहीं अंकिता, किताबें हमें एम्पथी सिखाती हैं। जब हम किसी किरदार की खुशी, संघर्ष या फिर उनके दर्द को पढ़ते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझना भी सीखते हैं। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। और यही इमोशनल जो बातें हैं जो अभी मैंने कही, ये चीज़ें मुझे तब फील हुई थी जब मैंने पढ़ा था द ट्रेन टू पाकिस्तान।
1: और रिसर्च भी कहती है कि नियमित रीडिंग करने से मेमोरी बहुत तेज़ होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत मजबूत होते हैं। यानी किताबें पढ़ना हमारे दिमाग के एक तरह की डेली एक्सरसाइज है।
0: आजकल तो बहाने भी मतलब काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर फिजिकल बुक हमारे पास नहीं है तो हम ई बुक पढ़ सकते हैं, समय नहीं है तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, लाइब्रेरी दूर है दोस्तों तो डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पढ़ने के रास्ते पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गए हैं।
1: और एक मज़ेदार आइडिया, अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा बुक क्लब शुरू कीजिए। मैंने तो अपने कॉलेज में शुरू किया था और हम लोग बुक डिस्कस करते थे। हर महीने एक किताब पढ़िए और फिर उस पर चर्चा कीजिए। यकीन मानिए, बातचीत का स्तर भी बदलेगा और आपकी सोच का दायरा भी।
0: तो चलिए आज युववाणी की ओर से एक छोटा सा चैलेंज दोस्तों, अगले 7 दिनों तक सिर्फ 20 मिनट किसी भी किताब को आप दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसके 100 पन्ने पढ़ें, 10 पन्ने पढ़ें, 8 पन्ने पढ़ें या फिर आप एक पन्ने से भी शुरू कर सकते हैं। बस चैलेंज इतना है कि आप उसे रोज़ पढ़ें। हो सकता है शुरुआत में ये एक आदत ना रहे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी।
1: और हाँ, अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसने आपको इंस्पायर किया हो, कुछ नया सिखाया हो या आपकी सोच बदल दी हो, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को, परिवार को ज़रूर बताएं, क्योंकि अच्छी किताबें तभी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं जब उनके पाठक उन्हें आगे बढ़ाते हैं।
0: ज़रूर दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए कि किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो अनुभव का संसार होती हैं। हर किताब हमें कुछ नया सोचने, कुछ नया समझने और शायद थोड़ा बेहतर इंसान बनने का एक अवसर भी देती हैं।
1: और साथ ही दोस्तों, आप हमें ईमेल करके या पोस्ट करके बता सकते हैं कि आपने इस हफ्ते कौन सी नई किताब पढ़ी है। तो अगली बार जब आप कुछ खाली समय मिले तो सिर्फ फोन की स्क्रीन मत

0: खोलिए, किसी किताब का पहला पन्ना खोल कर देखिए, हो सकता है वहीं से आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाए।
1: दोस्तों, आप जो भी नई किताब पढ़ेंगे या आप कोई भी हमें बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, हमारे बाकी श्रोताओं को भी कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी feedbackairpatna@gmail.com पर ज़रूर हमें लिखकर भेजें। और दोस्तों, तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मूवी बाजीगर से। और दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले जाते हैं फिल्मी दुनिया की पुरानी गलियों में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसे आज क्लासिक का दर्जा हासिल है। नाम है उस मूवी का तीसरी कसम। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, इसके पीछे भी उतनी ही मार्मिक और दर्द भरी है जितनी कि असल में ये थी।
1: तीसरी कसम गीतकार शैलेंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। बेहतरीन कहानी और संगीत होने के बाद भी यह फिल्म सफल नहीं हुई। इसमें शैलेंद्र को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
0: हीराबाई का किरदार निभाने वाली वहीदा रहमान से पहले अन्य अभिनेत्रियों के नामों पर भी विचार हुआ था, लेकिन अंततः ये भूमिका उन्हें ही मिली।
1: और रिलीज के समय फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, पर बाद में इसे खूब पसंद किया गया। यही नहीं, फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
0: तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई मूवी अचानक से पसंद नहीं आती है जब वो रिलीज हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम और हमारी सोच में बदलाव आता है, हम लोग वापस उस मूवी को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी मूवी है। जब हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद हम उसे और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उस चीज़ों को और अच्छे से उस चीज़ का विश्लेषण कर पाते हैं और फिर इस नतीजे पर उतरते हैं कि नहीं, ये तो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर अब सुनते हैं ये अगला गाना, जो कि शैलेंद्र ने ही लिखा है।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना गीत, मैं शायर तो नहीं। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के स्पेशल सेगमेंट का, जो हर सोमवार की तरह हम फिर से लेकर आए हैं तकनीकी सोमवार, जहां तकनीक की दुनिया से जुड़ी हुई नई और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
0: दोस्तों, आज का विषय है स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का बढ़ता उपयोग और इसके प्रभाव। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या कुछ कहना है हमारे कुछ युवा दोस्तों का जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्नब है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग जो आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। एआई के माध्यम से हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, जैसे कि छोटा सा छोटा कोई फ्रैक्चर हो या शरीर में कोई छुपा हुआ कोई ट्यूमर हो एकदम, जो कि आणविक रूप में है, माइक्रोस्कोपिक है, तो वो भी हम लोग जो है डायग्नोसिस कर पाएंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनेटिक डेटा का उपयोग करते हुए भविष्य में होने वाली कोई भी बीमारी जो है उसका भी जो है वो प्रिडिक्शन कर पाएंगे। उसमें जो है डॉक्टर्स जो है पहले से ही अवगत हो पाएंगे कि हाँ ऐसा बीमारी एक मरीज में हो सकता है, और बिना कोई लक्षण प्रकट होने से पहले ही। फिर हम लोग के पास जो वेरेबल्स है, यानी कि जो स्मार्ट वॉच हो गया या कोई फिटबिट बैंड्स है, उसमें जो एआई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है हृदय के गति का या ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में, तो अगर कुछ भी चूक होता है या कुछ भी उन लोगों को लगता है कि एआई के माध्यम से कि इधर उधर हो रहा है, तो फिर पहले ही जो है एक चेतावनी या अर्ली वार्निंग दे सकता है। अंततः मुझे यही लगता है कि हम लोग को खुले दिल से एआई का स्वागत करना चाहिए मेडिकल साइंस में, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि कभी-कभी ये गलतियां भी कर सकता है।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम राज है और मैं एक जनरल सर्जन हूँ। समय के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान ने अनेक परिवर्तन देखे हैं, जैसे स्टेथोस्कोप से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक की यात्रा। मानव बुद्धि, शोध एवं आधुनिक तकनीक का ही परिणाम है। अब इसी यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे संक्षेप में एआई भी कहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जैसे या एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे रेडियोलॉजिकल जांच की रिपोर्टिंग और एनालिसिस में काफी सहायक होती है। इससे डॉक्टरों का समय बचता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। यह नई नई दवाइयों की शोध में और उसके विकास में भी काफी उपयोगी होता है। आजकल एआई का उपयोग अस्पताल के प्रबंधन में भी होने लगा है। यह रोगों के फैलाव का पूर्वानुमान लगाने में भी कई बार मददगार साबित होती है। एआई से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तो हुई है, साथ ही इसके उपयोग से चिकित्सा खर्च को कम करने में भी काफी सहायता मिली है। हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा विज्ञान बुद्धिमान सहायक है जो विशाल मात्रा में उपलब्ध चिकित्सीय जानकारी का विश्लेषण करके डॉक्टर को अधिक सटीक और समयोचित निर्णय लेने में काफी सहयोग प्रदान करता है। आज चिकित्सा में उत्पन्न होने वाला डेटा अभूतपूर्व है। जांच की रिपोर्टिंग, रेडियोलॉजिकल इमेज, एआई कुछ ही क्षणों में इन सूचनाओं का विश्लेषण कर ऐसे संकेत प्रस्तुत कर सकती है जो रोग की शीघ्र पहचान एवं उपचार में सहायक होती है। शल्य चिकित्सा में भी क्षेत्र में भी एआई की भूमिका निरंतर विकसित हो रही है। ऑपरेशन के पूर्व योजना बनाना या 3D इमेजिंग के माध्यम से जटिल संरचनाओं को बेहतर समझना, रोबोटिक सर्जरी में सटीकता बढ़ाना और ऑपरेशन के बाद रोगी की मॉनिटरिंग में भी एआई उपयोगी सिद्ध हो रही है। इससे निर्णय लेने में काफी सहयोग मिलता है और साथ ही रोगी की सुरक्षा को भी बल मिलता है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी एआई नई संभावनाएं लेकर आई है, जैसे टेलीमेडिसिन और डिजिटल परामर्श। इससे हम दूर दराज के क्षेत्रों तक भी उपचार पहुंचा सकते हैं। लेकिन कोई भी तकनीक के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। एआई तभी उपयोगी है जब उसका आधार विश्वसनीय डेटा, वैज्ञानिक प्रमाण और नैतिक सिद्धांत, रोगी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं चिकित्सकीय उत्तरदायित्व से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। हमें इस बात को समझना होगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि चिकित्सा केवल विज्ञान नहीं बल्कि संवेदना का भी एक विषय है। कोई भी एल्गोरिदम रोगी की भय को नहीं समझ सकता है, उसके परिवार को आश्वस्त नहीं कर सकता और कठिन परिस्थितियों में मानवीय सहानुभूति का स्थान नहीं ले सकता। यही कारण है कि अंतिम चिकित्सकीय निर्णय सदैव प्रशिक्षित चिकित्सक का ही रहेगा। एक चिकित्सक के रूप में मेरा मानना है कि एआई कोई जादू तो नहीं है और न ही यह डॉक्टर का विकल्प है, लेकिन भविष्य की चिकित्सा ऐसी बुद्धिमत्ता से परिभाषित होगी जो चिकित्सक की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाए। और जब आधुनिक तकनीक और मानवीय करुणा साथ साथ चलेगी, तभी स्वास्थ्य सेवा वास्तव में उत्कृष्ट बन सकेगी। आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आर्यन राज है। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जो चिकित्सा निदान, व्यक्तिगत उपचार और दवाइयों की खोज में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य सेवा में एआई के बढ़ते उपयोग और इसके प्रमुख प्रभाव का विवरण करते हैं। एआई का बढ़ता उपयोग की वजह से एआई एल्गोरिदम एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन का विश्लेषण करके ट्यूमर, फ्रैक्चर और अन्य बीमारियों का प्रारंभिक अवस्था में सटीक पता लगा

0: रहे हैं। दूसरी तरफ मरीजों के चिकित्सा इतिहास और आवश्यक डेटा का विश्लेषण करके एआई उनके लिए विशेष रूप से अनुकूलित उपचार योजनाएं तैयार करने में मदद करता है। और हम लोग नई नई दवाइयों का खोज करने में हम लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं। एआई का उपयोग करने से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे रोगियों की जल्दी पहचान हो जाना, गंभीर बीमारियों का समय पर पता चलने से इलाज की सफलता दर और जीवन रक्षा में भारी सुधार हुआ है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाना, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड को एआई के फॉर्म में आसानी से और लंबे समय तक स्टोर बचता है, लागत में। अब एआई की चुनौतियों और के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे लागत और पहुंच। एआई की तकनीक बहुत महंगी होती है, जिसका लाभ दूरदराज या कम आय वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, उसका डाटा प्राइवेसी। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि डेटा प्राइवेसी की, मरीजों के संवेदनशील चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने से गोपनीयता उल्लंघन और साइबर सुरक्षा का जोखिम बढ़ता जाता है। तीसरी, मानवीय स्पर्श की कमी, मतलब हमारे प्रोफेशन में पेशेंट्स डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे इस चीज़ की यहाँ कमी होती जा रही है।
1: दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ युवा दोस्तों के विचार विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का बढ़ता उपयोग और इसके प्रभाव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने सुना साचित टंडन की आवाज़ में मूवी यार यार टू से ये प्यारा सा गाना। इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देते हैं एक आवश्यक सूचना। दोस्तों, आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है दांतों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं, कारण और निदान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 15 जुलाई 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप सभी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-222-500 एवं 0612-4026-349। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-222-500 और 0612-4026-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 15 जुलाई 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 6 जुलाई है और 6 जुलाई के अवसर पर हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाज सुधारक, संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्य और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को, क्योंकि उनका निधन 6 जुलाई 1986 को ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज है उनकी पुण्यतिथि।
1: बिल्कुल धारिणी, बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने स्नेहपूर्वक बाबू जी कहा जाता है, ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, न्याय और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
0: दोस्तों, उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाया।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी से उन्हें देश के प्रमुख नेताओं की पंक्ति में खड़ा किया। आज़ादी के बाद भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि एक ऐसे भारत के निर्माण में हम योगदान देंगे जहां हर नागरिक को समान अवसर और समान न्याय मिले।
1: तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी नेता और प्रखर विचारक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर।
0: बिल्कुल अंकिता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां उन्होंने हासिल की।
1: मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।
0: अंकिता, शिक्षा के साथ साथ उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत प्रभावशाली रहा है। वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। देश के विकास और आत्मनिर्भरता को लेकर उनकी सोच काफी दूरदर्शी थी।
1: तो दोस्तों, आइए उनकी जयंती पर हम संकल्प ले कि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करेंगे, समाज में सद्भावना बनाए रखेंगे और देश के प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान देंगे।
0: इसी संदेश के साथ हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि और सशक्त नमन करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलिए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला ट्रैक, जिसका नाम है बारिश। क्योंकि दोस्तों, आज मौसम भी काफ़ी बारिश जैसा हुआ है और अभी आंधी पानी भी आने की संभावनाएं हैं।

0: दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों से हम आपको बारिश तो नहीं सुना पाए, मगर आज के मौसम से मिलता जुलता गाना सवार लूं हमने आपको सुनाया मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म लुटेरा से। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट।
1: मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20I में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाएगा, जिसके बाद ब्रिस्टल और साउथैम्पटन में मैच होंगे। फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फ्रांस ने भी पैराग को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को 7वीं बार महिला T20 विश्व कप का पर अपना कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 11 गेंद रहते 7 विकेट से करारी मात दी।
0: इसी के साथ दोस्तों, खत्म होते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट। दोस्तों, अब बारी है आज के रोचक तथ्य की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं खून हमेशा हर पशु पक्षी या फिर जानवर कह लीजिए उनमें लाल रंग का नहीं होता, और कई बार ये ब्लू ब्लड भी हो सकता है। अंकिता, क्या आपको पता है इसका क्या रीज़न हो सकता है?
1: बिल्कुल दोस्तों, इसका कारण है शरीर में पाया

0: जाने वाला कॉपर, जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो रोचक तथ्य है ये आपको काफी रोचक लगा, और ये सुनकर आप अमेज्ड भी हो गए होंगे, चौंक गए होंगे कि आखिर ब्लड ब्लू कलर का कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का रोचक तथ्य और हम आ पहुंचे हैं अब कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर। उम्मीद है युववाणी कार्यक्रम की आज की कड़ी भी हमेशा की तरह आपको काफी पसंद आई होगी और आगे भी आप यूं ही युववाणी का आनंद लेते रहेंगे।
1: तो दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनकी भी सेहत का ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ दोस्तों इन्वायरमेंट का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट से, इसी नेचर से तो हम बने हैं, तो हम क्यों ना अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखें।
0: और किताबों को अपने जीवन में एक छोटी सी जगह दें, ज़्यादा नहीं, रोज़ एक पन्ना। रोज़ एक पन्ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: जी दोस्तों, तो दोस्तों कार्यक्रम में अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर आपकी कुछ कोई भी सुझाव शिकायतें हों तो हमसे साझा ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी ईमेल आईडी है feedbackair@gmail.com। दोस्तों, मैं फिर से दोहराती हूँ, हमारी ईमेल आईडी है feedbackair@gmail.com। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमें पोस्ट के माध्यम से भी अपनी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी सुझाव शिकायतें हैं वो भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी केंद्र,
0: निदेशक।
1: आकाशवाणी पटना, पिन कोड 8001।
0: अब दोस्तों दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंकिता और धारिणी को इजाजत। फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ।
1: एक और नए दिन खुद में एक नई उत्साह जगाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमार सभन सुननिहार लोगिन के राउर विनीता के प्रेम भरल नमस्कार। एक बार फिर से दिन सोमवार बा, आज हम प्रस्तुत भइल बानी राउर इहे अपन मनपसंद कार्यक्रम आरती के लेके, जोना में हमेशा नीक नीक जानकारी के साथ ही हम निमन निमन लोकगीत फिरवा सभे के सुनाई ला, ताकि राउर मन जोन बा एकदम मनसाइल रहो। आज एगो विशेष दिन है। अब रुआ सभी सोचत हो कम कि ऐसा कौन बात भइल कि जो विशेष दिन के बात करता नहीं। जी हाँ, कुछ विशेष चर्चा तो बा ही, साथ ही विशेष दिन ऐसे बा काहे कि हमने ना अपने एक कार्यक्रम में आज एगो बतकही सुनाए वाला बानी, और वो भी कोई साधारण आदमी की ना, पद्मश्री भरत सिंह भारती जी से बातचीत के अंश सुनम हमने सभी अपने कार्यक्रम आरती में। भेंट वार्ताकार हुई हैं हरेंद्र आजाद जी, जो उनका से बातचीत करी हैं। तो रुआ सभी एक कार्यक्रम के आज बीच में छोड़ के कतहूँ मत हटम, बस

तनिका सब्र रखी, आधा घंटा मन बांध के बैठी। आज राउर सब के मन एकदम हर्षाए वाला बा। तो चली हम अपन एक कार्यक्रम के आगे बढ़ाएं जानकारी भरल बात के साथ। देखी पशुअन जोन बारे आज के समय में रुआ सभी देखा थो कम कि लोगिन के पशु से बड़ा लगाव होला, आ होखों के चाहे काहे ना होके के चाहे। लेकिन आज हम बात कर में को ऐसा जरूरी बात पर जेकरा जानल हर ओ परिवार खातिर जरूरी बा, जेकरा करे गाय भैंस बकरी चाहे कुकुर बारन सब। पशु हमने के धन हवे, बाकी कोनो कोनो बीमारी ऐसा होला जे जानवरन से सीधे हमने इंसानन में फैल जाला, एकरा के जूनोटिक बीमारी कहल जाला। जैसे कि रेबीज भइल, टीबी भइल, बर्ड फ्लू भइल, ब्रुसेलोसिस नाम के बीमारी भइल। लेकिन डरे के कोनो बात नहीं के, बस छोट छोट बात के ध्यान राखी सबे, आ अपन पूरा परिवार के भी यह बात के समझाएं कि हो कैसे सुरक्षित रहे के बा। अब रहल सवाल छोट छोट बात कौन है, तो छोट छोट बात है कि अगर रउआ सबे दूध बाहर से लेता नहीं चाहे गाय भैंस के दूध बा, तो ओकरा कभियो कच्चा मत इस्तेमाल करी, उबाल के पी। बढ़िया से उबाल के पिए से टीवी या ब्रुसेलोसिस नियन खतरनाक बीमारी के वायरस जोन होला वो मर जाला। आ अगर वह घरे मांसाहारी खाना बनाता तो मांस के खूब बढ़िया से पूरा पका के ही खाए के चाहिए, आधा पकल मीट बीमारी के न्योता देला। खेतन में जानवरन के मलमूत्र से सब्जी दूषित हो सकेला, ऐसे कोनो भी फल चाहे सब्जी के बिना धोले मत खाएं। अब बात जब सब्जी या फल के धोवे के बात आई तो आपन निजी स्वच्छता पे भी उतने ध्यान देवे के चाहिए। गाय भैंस के दूहे के बाद चाहे दूहे से पहले चारा डाले के बाद गोबर उठावला के बाद हाथ के साबुन के साबुन से या साफ पानी से रगड़ रगड़ के धोवे के चाहिए। जबले हाथ ना साफ होके तबले सीधे अपन आँख नाक चाहे मुंह के मत छुई। अगर हाथ में कतहु कट गईल बा चाहे कोनो घाव बा तो जानवरन के भिरी जात घरी ऊपर पट्टी बांध ली, दस्ताना पहन ली। आ समय समय पर अपन गाय भैंस आ खास करके घर के कुकुरन के रेबीज के सुई जोन होला वैक्सीन जरूर लगवावे के चाहिए। अगर कोनो जानवर बीमार लोके तो ओकरा के तुरंत दूसर स्वास्थ्य जानवरन आ बाल बच्चन से दूर करी, अलग बाड़ा में बांधी। बाड़ा में किलनी भ गई, पिस्सू हो गई, मच्छर मत बन पे दही, काहे कि इहे बा जो उनकी लंपी नियन बीमारी फैलावे में असरदार हो जाला। ऐसे बाड़ा के हमेशा सूखा हवादार रखी। आ अगर फिर भी आपातकालीन स्थिति में कोई जानवर काट ले बा तो कोनो कुकुर बिल्ली चाहे गीदर काटे खरोच मार दे ता घाव तुरंते बहता पानी से साबुन से 15 मिनट तक धोई, आ ओकरा बाद बिना कोनो देरी के सरकारी अस्पताल जाके एंटी रेबीज के सुई जरूर लगवावे के चाहिए। घरेलू झाड़ फूक के चक्कर में तो एकदम मत पड़ी। आ मरल जानवर अगर होके तो ओकरा के खुला में मत फेंकी, आबादी से दूर गहरा खान के ओमे चूना नमक डाल के ओकरा के तोप देवे के चाहिए। तो ई तो भ गई पशुअन से आदमी में फैले वाला जोन रोग बा ओकरा से बचाव आ ओकर उपचार। तो चली अब यही के साथे साथे हम आज बात करे वाले बानी पद्मश्री भरत सिंह भारती जी से, तो काहे ना उन करे गावल गीत भी रुआ सभी के सुनाई। तो सुनी सभी लोकगीत समय बा बरसात के, तो नीक लागी रुआ सभन के ई बरसाती सुन के, जरूर आनंद उठाई यह गीत के। आगे हम फिर उसे बनल रहा है कार्यक्रम में।

वाह, बहुत निमन बरसात के मौसम में बरसाती गीत जेने तेने बदरा के जमात ले ले बा। और बात भी सही बा, ये होखतो बा, बारिश होखे चाहे ना, लेकिन बदरा के जमात तो जेने तेने बुझाते बा। तो चली एहनी गीत के साथ ही अब बात करी हम एगो और विशेष चर्चा के। आज देखी 6 जुलाई है, आ 6 जुलाई कहल जाला ना कि जन्म मरण जौन होला उ जीवन के एगो प्रमुख अंश होला। उहे तरह जब आदमी धरती पर आयल बा तो जाही के बा, आ फेरु से ओकर जन्म होके धरती पर आही के बा। तो देखी आज 6 जुलाई है, आ आज हुए के दिन 6 जुलाई 1986 के हमनिन के भोजपुरिया माटी के सुपुत्र पूरा देश के शान बाबू जगजीवन राम जी एह देश के दुनिया से विदा भइल रहन। बाबूजी खाली एगो नेता ना रहनी, शोषित वंचित और दलित समाज के बुलंद आवाज रहनी। जगजीवन राम जी के जन्म हमने इनके बिहारी के भोजपुर जिला के चंदवा गांव में भइल रहे, जो उनके अब बक्सर जिला कहल जाला। हमने के भोजपुरी माटी कैसन कैसन हीरा पैदा कैले बारे, इस सच में सोचे के विषय बा। रुआ सभी के शायद याद हो कि चाहे ना, जब 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध भइल रहे और बांग्लादेश आजाद भइल रहे, ओहू समय बाबूजी ही देश के रक्षा मंत्री रहनी। उनकर सूझबूझ और बहादुरी के लोहा पूरा दुनिया मानलस। संसद में 40 साल से ज्यादा समय तक रह के उ देश के सेवा कैले। नई दिल्ली में उनकर समाधि स्थल के समता स्थल कहल जाला, जे हमने इनके हरदम बराबरी और भाईचारा के सीख देवेला। तो आज बाबूजी के पुण्यतिथि पर, हमने इनके बाबू जगजीवन राम जी के पुण्यतिथि पर उनका के नमन करत अनिजा, आ उनकर देखावल रास्ता पर चले के कसम खात अनिजा। आज जैसे कि हम कहने कि जन्म मरण जीवन के एगो अंश होला, तो वही तरह आजे के दिन मतलब 6 जुलाई के दिन पूरा देश के महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और हमने इनके आन बान शान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती मना रहा बा। आज हुए के दिन साल 1901 में कलकत्ता में उनकर जन्म भइल रहे।

0: आज देश उनकर 125वीं जयंती मना रहल बा। जब जब देश के एकता और अखंडता के बात होई, तब तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम सबसे ऊपर आई। काहे कि वे तो ये नारा देले रहनी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। तरुआ सभे के बता दी कि वो खाली एगो बड़ नेता ना बल्कि बहुते बड़ विद्वान भी रहनी। मात्र 33 साल के उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बननी, यानी कि कुलपति। आज़ाद भारत के पहला सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रहनी। देश के एकता खातिर, खास करके जम्मू कश्मीर के भारत के अटूट अंग बनावे खातिर वो अपन पूरा जीवन न्यौछावर कर देले। आज हमने इनके ऐसा महान देशभक्त के नमन करत अनिजा और डॉक्टर मुखर्जी के याद करत आगे बढ़त अनिजा। तो आज यह दोनों आदमी बाबू जगजीवन राम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के हमने इनके गोर लागत अनि। और साथ ही साथ अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख हिस्सा जौन बा जौन के हम शुरू में ही रुआ सबके कहले रही कि आज कुछ खास चली, बिना देर करते हुए बत कही सुनवाई पद्मश्री भरत सिंह भारती जी से बातचीत के ई कुछ पहला अंश। एकर बाचल अंश कुछ अंश बड़ा बा, एकर पूरा बातचीत के जौन अंश है तो एकर पहला अंश हम रुआ सभी के आज सुनाओ तनी। तो सुनी सभे ए अंश के भेंट वार्ताकार बरे हरेंद्र आजाद जी।
1: प्रणाम, हम हरेंद्र आजाद रुआ सबने के आरती कार्यक्रम में स्वागत बा। आज बहुत विशेष बा ये कार्यक्रम में हमने के स्टूडियो में एगो विशेष मेहमान आयल बानी, रुआ बानी पद्मश्री से सम्मानित भरत सिंह भारती जी। यही साल 25 मई 2026 के राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में रुआ के ये सम्मान से सम्मानित कैल गई है। रुआ बारे में विस्तार से जानल जाए, कला के क्षेत्र में और योगदान के समझल जाए, एक से बढ़ के एक भोजपुरी लोकगीत जो कई गो फॉर्मेट में बा, सब में राउर बढ़िया पकड़ बा, गावे के साथ साथ रुआ लिखबो करे नहीं, और पद्मश्री के साथे अन्य भी बहुत सारा सम्मान से अब तक रुआ नवाजल गई बनी। तो आज रुआ से विस्तार से बातचीत हुई, रुआ बारे में जानल जाई, राउर कला के बारे में कि तरह राउर ये जीवन के यात्रा ये मुकाम तक ले पहुंचल बा, ये यात्रा रुआ संपन्न कैले बनी। तो सबसे पहले भारती जी कार्यक्रम में राउर स्वागत बा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हमने के जान के बड़ा खुशी भइल कि अपन बिहार के भोजपुरिया माटी से एगो लाल जो उनकी उम्र में देखल जाओ तो 70-80 साल के यात्रा पूरा कर लेल बनी। राउर कला के जोन अपन सेवा के बल पर कला के रुआ सही मायने में उपासक बनी, जौन के वजह से रुआ के भारत सरकार पद्मश्री से नवजला सा। तो ये जान के बड़ा खुशी भइल भोजपुरिया परिवार में, अपन बिहार में, सारा लोग में। ये यात्रा अपने के कब से आरंभ भइल, थोड़ा सा हमारे श्रोता लोग रुआ से जुड़ो, रुआ बारे में तनी जे जानने के जाना तू जान ले और जीवन परिचय के बारे में। तो हम चाहें कि तनी अपने जन्म से लेकर अब तक के यात्रा के बारे में वो संक्षिप्त वृतांत सुनाई
2: जी। सबसे पहले तो हम इस श्रोता लोग के अपना ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते नहीं कि हमरा के योग्य समझ के हमरा से बात सब पूछल जा रहल बा। बड़ी प्रसन्नता बा हमरा ये बात
1: जी।
2: हम अपन बात कही रुरा से, हमरा गीत से, गीत गौने से बहुत पहले से लगाव रहे
1: जी।
2: बचपन से ही हम 5 बरस के रहनी, तबे से कुछ न कुछ अपना भाव में, अपना भाषा में कुछ गुनगुनात रहे तो लोग के अच्छा लागल। अब बुझाइल कि लड़का चल के आगे कुछ कहगी।
1: कब के जन्म राउर?
2: हमारे जन्म बा 20 नवंबर 1936 के।
1: 1936
2: जी जी।
1: तब तो रुआ अंग्रेजन के भी देख ले हो
2: जी जी। अंग्रेज से हम मुखासी भल बन लो के वो घड़ी करीब करीब 4-5 बरस से रहनी
1: जी।
2: आज देखली वो घड़ी हवा गाड़ी कहा रहे, वही पर हवा गाड़ी पर चढ़ के जाते रहे
1: जी जी।
2: तो हाला हो कि हवा गाड़ी पर लाड़ी पर चढ़ के आज बड़े सो गोरा कुछ लोग तो डरे, हम लिखते लड़का रहें डराते रहें भागन तो धौरी जने मारू जी हई बंदूक पिस्तौल से। तो वो घड़ी हम देखले बनी सब।
1: अच्छा अच्छा। तो वह 5 साल से गुनगुनात रहा
2: जी जी जी।
1: तो जब देश अपन आजाद भइल 47 के टाइम में, तो वो टाइम ले तो वह 10 साल के हो गए लोग
2: जी जी जी।
1: तो वो टाइम में शुरू में का गुनगुनात रहा कुछ याद था
2: जी जी। 10 साल में
1: अगर कोनो गुनगुनात होगी तो तनी गुनगुना दी बचपन वाला
2: जी जी। 10 साल की उम्र में तो कुछ टप्पा टुया हम गावे लागल रहे। हालांकि मेरा शौक रहे बजाऊ के
1: जी,
2: तो ढोलक बजाते रहे
1: जी।
2: हमारे पिताजी भी गौया रहले, खूब बड़का गौया तो ना रहा लेकिन गवई के गांव गवई के एगो साधारण परिवार में गावे वाला रहन आदमी
1: जी जी।
2: हालांकि हमारे दुर्भाग्य बा कि उनका के हम बढ़िया से देख ना पौली
1: जी,
2: माने देख पौली लेकिन समझ ना

0: आबाजे डिम डिम डिम बजरुआ बाजे संग भूत भय तलवा नाचे रामा।
1: वाह।
0: अरे रामा गर्दन में शोभे नागकारी बैल सवारी है रामा।
1: क्या बात क्या बात, मतलब शिव जी के भी बढ़िया है, मैं चर्चा रहे
0: जी, जी, जी।
1: बरसात सावन के महीना में तो लगभग शिव जी के महीने हो
0: यही
1: सब रहे, तो वो टाइम में 10 साल की उम्र में जब ये सब गुनगुनात रहनी तो आसपास के लोग के परिवार के लोग के क्या प्रतिक्रिया रहते रहे?
0: परिवार के प्रतिक्रिया रहे कि ये लड़का के भविष्य अच्छा बुझाता है,
1: जरूर आगे चल के कुछ करी।
0: हाँ आ कुछ लोग हो रहे मारी ऐसा नहीं जन्म ले ले बाकी सब टाइम से ही पास करके अनर्गल।
1: हाँ मतलब ये का गुनगुनात रहा था टाइम पास करता। हाँ, हाँ, जी जी दोनों तरह के मिलल जुलल प्रतिक्रिया रहेला लोग के विचार ही रहेला। तो फिर हुआ ये 10 साल के बाद पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, फिर हुआ कहाँ से पढ़ाई लिखाई कुछ
0: भाई? पढ़ाई लिखाई तो वहीं से शुरू के लिए हम
1: जी जी,
0: तो हमारा तो जलाने में पहले स्कूल रहे।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो घड़ी सी क्लास बी क्लास ए क्लास लोअर क्लास ये रहे घड़ी।
1: वाह।
0: तो लोअर क्लास तक ले तो द्वार पर पढ़ी।
1: हाँ।
0: अपर क्लास में गांव के कोई स्कूल बन रहे नया
1: जी,
0: वो मैं चौथा में पढ़ ली, चौथा पंचवा
1: जी जी,
0: गांव में उतने स्कूले रहे।
1: हाँ।
0: पढ़ाई पास कैला के बाद तले हम 10 से ऊपर हो गए
1: जी,
0: तो चल गए बगल में रहे वो गांव मिडिल स्कूल रहे चिलहर हो गांव के नाम।
1: चिलहर और गाँव कौन है?
0: हमारे गाँव नोनौर है।
1: नोनौर
0: जी, और परगना है हमारे गाँव
1: जी,
0: वहाँ दूसरा शिक्षा ग्रहण के लिए। तो वही दरम्यान से हम गाते रहे, कुछ कविता भी करते रहे, कुछ गीत लिखत भी।
1: अच्छा, स्कूलों में सनिचर सनिचर के गाओ
0: जी,
1: तो
0: जी, जी,
1: हाँ।
0: जी। स्कूल में तो हमारे नामे हो गई रहे
1: बा।
0: कि भाई भरत सिंह भारती बड़ा गावल बढ़िया।
1: हाँ।
0: मास्टर लोग ध्यान रहते रहे हमारे पर,
1: पीठ थप थपावे लोग
0: जी, जी।
1: बड़ा आनंद आवत हो,
0: बहुत बहुत
1: पुरस्कारों मिलत हुई
0: जी।
1: लड़का से
0: जी नाटक उटक में भी भाग लेने का मौका मिले स्कूल में हुए
1: जी जी
0: फंक्शन सब।
1: अच्छा, तो पिताजी के साथ कब छूटल अपने के?
0: पिताजी के साथ हमारा तो लागल था कि 2-3 साल हम रही।
1: हाँ।
0: जबकि हम ना चीन पहुँचने के पिता के यहाँ समय ना पहुँचने बहुत बचपन।
1: तो मैंने माता जी के साथ रहा।
0: हाँ, माता जी के साथ रहा।
1: आप परिवार में और ही क्या रहे?
0: हाँ, परिवार में 4 भाई और 2 बहन हमारे।
1: हाँ, नंबर में
0: सबसे आखिरी नंबर में,
1: सबसे छोट
0: जी।
1: बड़ा प्यार दुलार मिलत हो,
0: बहुत बहुत
1: गायकी में तो अव्वल हुई है
0: जी, जी।
1: तो नाम रहे तो सारा
0: जी,
1: लोग सम्मान करत
0: जी, जी।
1: अच्छा, तो फिर जब आगे बढ़नी तो जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखे के पड़ल हुई। पारिवारिक स्थिति कैसा रहे? ठीक ठाक रहे?
0: पारिवारिक स्थिति ठीक रहे।
1: हाँ,
0: क्योंकि हमने के खाए पिए के चाहे सम्पन्नता रहे।
1: हाँ, संपन्न परिवार में रहने ये दिक्कत ना रहे,
0: दरिद्रता ना रहे
1: जी जी जी।
0: खाए पिए खातिर रहन सहन खातिर सब सब ठीक से।
1: हाँ, ना तो कुछ लोग बढ़ान हो जाला तो लागेला अपन खाली विपन्नते बतावे, संपन्नता ना बतावेला। अच्छा अच्छा, तो फिर वह उच्च शिक्षा ग्रहण कैली और वह कीर्तन से भी जुड़े रहनी शुरू से, कीर्तन मंडली में गावत रहनी, तो थोड़ी ओकरा बारे में कुछ बताए।
0: कीर्तन गाँव में अब तो घर दूसर विकसित संगीत तो कोई रहे ना
1: जी,
0: ना
1: जी।
0: कोई शास्त्रीय संगीत जानत रहे
1: जी,
0: ना कोई सुगम संगीत जानत रहे, ना कोई गजल गावत रहे। गांव के वही कीर्तन हरे राम राम राम हरे हरे हरे, यही तरह के और भी कीर्तन मंडली रहे तो कीर्तन गावत रहे, स्वर देख तो बड़ा अच्छा लगे
1: जी।
0: तो हमारा में वो जुनून हो गई ना कि जब भी गाँव रात में कान में आवाज पहुंचे
1: जी,
0: हम सब छोड़ छाड़ के चुप पे घर के गार्जियन से निकल जाए।
1: वाह,
0: बहुत गा बगा के रात के तो केवाड़ी खुली ना, ऐसे उसे सुती हो जाए।

0: जी जी
1: आज सवेरे आई तो पिछातो रही
0: हाँ
1: कहा रात पर रह
0: हाँ
1: दंड सब होके
0: तो क्या मारे हो बरा
1: गार्जियन हमारा भाई
0: भाई
1: बड़ा भाई रहा
0: हाँ
1: तो वह उनके कंट्रोल में हमने शिक्षा शिक्षा सब होते
0: मतलब क्या रात भर का होता बजा होता
1: हाँ
0: जी जी
1: पिटाते रहे कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतना खिस क्रोध हो जाए कि वो पाया में बांध के कहा कि मारे कब कब करम बा तो उसमें पिटाते रहे लेकिन हमारा जुनून ऐसा रहे वो सवार हो गए छूटबे ना करे हम चाह ना चाह के भी चली जाए
0: तो ये जो से वह दीवानगी देखी आज रोए कहाँ पहुंचे ले बात अच्छा हम ये जानकारी मिलल कि रोवा लिखबो करे नहीं अपना से अपन लोकगीत वगैरह तो बा कोनो संस्मरण जेहन में जो रोवा लिखले ओखिया गईले ओखी काफी दिल के करीब
1: हो पहले तो ऐसे ही चौथे क्लास से कुछ कुछ लिखे के हम
0: जी जी
1: टेंडेंसी कहीं दुआ हुआ लिखले एक बार तो कुछ गीत लिखे लग नहीं
0: जी ऐसा कोनो गीत जो रोवा लिखले ओखी जेहन में होके
1: जी सुनाओ तने वो पहले गीत

0: से करीब हो गया।
1: पहले तो ऐसे ही चौथे क्लास से कुछ कुछ लिखे के हम
0: जी जी
1: टेंडेंसी कैले, दोहा हुआ लिखले, एक बार तो कुछ गीत लिखे लगले
0: जी। ऐसा कोनो गीत जो रुवा लिखले हो कि जहन में हो के
1: जी सुनाओ तने। वो पहले गीत रहे, वो शंकर भगवान के गीत रहे
0: जी
1: लिखले रहे। वो लोक गीत के को विधा सवेरे के बेरा होखेला,
0: भोर में गावल जाला निर्गुण
1: जी, ना निर्गुण ना
0: पराती
1: पराती तो पराती बड़ा अच्छा लगल हम सुनने
0: जी।
1: तो वही ढरा पर हमू पराती को लिख रहे। तो पराती सुनाओ तनी।
0: हाँ हाँ सुनाओ, स्वागत बा।
1: अरे भोले धरम

0: बोला
1: वाह
0: पंछी बोलने लागे जाति चलने लागे, पक्षी बोलने लागे जाति चलने लागे। अरे भैले धरा मावा के बेरा सवेरे रूरा जागी हो शिव भोला, सवेरे रूरा जागी हो शिव भोला। अरे बावे हाथ शिव ले ले तीरे सुनवा, बावे हाथ शिव ले ले तीरे सुनवा। अरे धैले हाथ भंगी आके झोला सवेरे रूरा जागी हो शिव भोला, सवेरे रूरा जागी हो शिव भोला।
1: बहुत सुंदर प्राती रहल। अच्छा तब इतने रुआ अपन करवा के आगे बढ़े नहीं तो फिर तेरा उर शादी विवाह भी कब भइल?
0: शादी विवाह तो हमारा प्रौढ़ावस्था से पहले ही कुछ बचपने में हो गई शादी।
1: अच्छा अच्छा
0: माने 14 साल की उम्र में शादी हो गई।
1: 14 साल में
0: जी
1: जी
0: अब वही गिर से अपन जीवन
1: तो कितना संतान बालोग अपने के?
0: हाँ तो हमारा संतान में 3 गो लड़का और 2 गो लड़की
1: जी
0: 5 गो।
1: अच्छा तो वो लोग क्या करता था?
0: बड़ा लड़का तो खेती गृहस्थी में
1: जी
0: उस संभालन, और दूसरा लड़का मिलिट्री में भाल हो गई
1: देश सेवा में
0: जी जवान किसान और जवान
1: देश चलावे वाला दोनों लोग बगल में।
0: और तीसरा लड़का हमारा विधा में आ गए संगीत के
1: गावेला बढ़िया।
0: हाँ गावेला नाल के बढ़िया प्लेयर है।
1: अच्छा अच्छा नाल बजा ले
0: आकाशवाणी पटना से वो भी नाल के बिहाई के
1: अच्छा
0: प्लेयर बना।
1: तो और वही एगो चीज बतानी है कि बड़ा लड़काइयों में मुझे और ब्याह हो गई
0: जी
1: तो और मलकाइन के ऐसे दिक्कत ना रहे कि का गावल बजावल कर नहीं सब में कितने
0: खिलाफ रही हम खिलाफ।
1: हाँ
0: उनको निकल रहे कविता
1: तो कितने मनावत रहने तो कैसे मनाई रहो मैनेज के तरह होके
0: एगो कविता 2 मिनट।
1: हाँ हाँ सुनाई ना सुनाई
0: उनके घर रही बाकी बड़ा खुशियात रही।
1: हाँ
0: का कहीं हाल घर के अपन कहले में बड़ा शिकायत बा बाकी सुनने रउरा चाही ना तो कहलो हमारा निहायत बा।
1: वाह वाह
0: मेहरारू हमार साफ सुघर देखे में बार सुघर भाड़ी अब बान छान के ऐसा जैसे गिरा बाज कबूतर भाड़ी।
1: वाह वाह
0: बोले चाले में बाघिन भाड़ी घर भर के धारा दे दी हम कहते के बोले के कहिला तो उलझे तो तुम चंका देनी बाहर के तही से आई ले तो तीरों बकरी खौरे ली मालपति बुरियान
1: काल के आयल बने।
0: हाँ बाहर के तही से आई ले तो तीरों बकरी खौरे ली और ऊपर कुछ कहिला तो करकाही लेके दौड़े ली।
1: बहुत खूब
0: यही तरह साहु भाई के
1: जी जी जी जी तो बहुत बढ़िया तो वहाँ का मान गए तो अब तो रुआ बड़का नाम कब से हो गए नहीं कब से लोग जाने लगल कला के क्षेत्र में रुआ स्थापित हो गए नहीं
0: जी
1: ये कब से
0: आई कले तो हम लूचे लफंगा के टाइटल रहे।
1: हाँ
0: ससुराल से लेके गाँव घर गिरा जहाँ जाए मन लूचे लफंगा के
1: टाइटल। हाँ गवैया बजैया
0: लूचा लफंगा का
1: जी जी
0: लेकिन माता पिता भी सब खिलाफ है।
1: हाँ
0: लेकिन जब पटना आकाशवाणी से इंटरव्यू देनी लोकगीत के आ पास हो के जब पहला प्रोग्राम मिलल आ जब रेडियो में प्रसारण भइल तो सभी सुनलस।
1: वाह ये कब के बात है?
0: ये 1962-63 की बात है।
1: पहला बार 62 में हुआ आकाशवाणी पटना
0: जी जी
1: हाँ प्रसारण भइल
0: जी तो सभी सुनलस तो सबके कान खड़ा हो गए अरे यो कौन चीज बुझाता है कैसे पटना में आवाज होता
1: है
0: मन के कान सभी सुनाता बड़ा भइल लोग के
1: जी जी
0: तो वही दिन से डिग्री मिल गई हमारा।
1: हाँ
0: हाँ अब गावे के हो रोक नहीं खेला गावत
1: मतलब कुल मिला के आकाशवाणी रोक ठप्पा लगा
0: दे जी जी बस वही दिन से मिल गया।
1: हाँ तो आगे चल के रुआ बहुत सारा पुरस्कार मिलल आ कई गो विधा में रुआ गईनी सोहर निर्गुण कजरी चैता देवी गीत खिलौना निर्गुण
0: जी जी
1: तो बहुत सारा भोजपुरी लोकगीत के प्रकार बा सब में रहा दखल रहा बा लिखलहू बनी आ साथे साथे कई गो

0: सम्मान भी मिलल बा।
1: जी
0: तो अच्छा, ये सबसे बाद में रुआ मिलल है पद्मश्री के सम्मान, जो उनकी सब अब तक के सबसे बड़का सम्मान रुआ मिलल बा। तो एक सूचना रुआ कब मिलल?
2: ये सूचना हमरा के मई 26 में मिलल, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मई में,
0: माने यही साल,
2: यही साल, हाँ,
0: मई में रुआ सूचना मिलल।
2: हाँ, सवेरे
0: सूचना ये रुआ के दिल कौन माध्यम से मिलल?
2: सवेरे वक्त अभी सूत कुठले आदमी रहे, तो एक लड़का हमारा पोतार बाड़े ही छोटे जी, फोन आये जस दिल्ली से, गृह विभाग से, तो कहलन कि आप भरत सिंह भारती बोल रहे हैं? कहें कि नहीं, हम उनका पोता बोल रहे हैं। तो बोले वो कहाँ है? तो सोए हम उनको जगा कर दे रहे हैं। तो कहेंगे ऐसे ठीक है, बाद में हम बात कर लेंगे। उनसे कह दीजिएगा कि उनको पद्मश्री का सम्मान मिल गया है। और हम, मुझे लगता है कि 26 जनवरी था, उस दिन हम लोग सम्मान करेंगे उनको, जिला पर कलेक्टर से सम्मान करेगा। बड़ी खुशी हुई।
0: तो ये प्रतिक्रिया हुआ परिवार में, समाज में, तो एकदम जंगल में आग खड़ी फैल गई।
2: जी जी
0: हाँ, तो कई तरह के बधाई मिलत रहे।
2: जी जी, अब तो एक बात तो मान लीजिए सगरे पत्रकार आवे लगल लोग, बहुत लोग आए लगल, पूछताछ हुए लगल, पहचान बचन 4-5 दिन हम ली।
0: हाँ, एकदम रुआ के पूछ बढ़ गई।
2: जी
0: रातों रात एकदम से चमके लगनी।
2: जी, कलेक्टर बोलन उनको भी गई, तो वो सम्मान के लन, DSP SP सब लोग बस सम्मान के,
0: बहुत सम्मान के बात भी बा। ये सब इतना आसान उपलब्धि नहीं के, बड़ा मेहनत के बाद, बड़ा तपस्या के बाद जाके ये सब चीज अवसर जीवन में आयला, तो लाजमी बा। अब मन में आदमी की खुशी होबे करी, आदमी के मन गदगद होई।
3: बहुत नीक बत कही के अंश रहल ह। बात करत रहन हरेंद्र आजाद जी पद्मश्री भरत सिंह भारती जी से। आ ई बातचीत हम रउआ सबन के पूरा ना सुना पहुनी, बातचीत थोड़ा ज़्यादा ह, लंबा ह, और हमने इनके कार्यक्रम जौन बा अतने समय खातिर सीमित बा। तो रउआ सब एक खातिर निराश बिल्कुल मत हुई। ये अंश पहला अंश रहे जौन हम आज सुनौनी, आ एक दूसरा अंश खातिर रउआ सब जरूर इंतजार करी 17 जुलाई के यही कार्यक्रम में, इहे बेरा पर 5:30 बजे आरती में हम एक आधा अंश भी रउआ सबन के जरूर सुनवाएं। ऐसे कुछ इंतजार, एकरा बाद पूरा अंश पद्मश्री भरत सिंह भारती जी के आवाज में, उनका तरह से बातचीत के अंश हरेंद्र आजाद जी के साथे जरूर सुनम सभे। आ इतना नीक बत कही खातिर हम इनका बहुत धन्यवाद करतनी। आ साथे साथे अब हमार समय उरिया रहल बा, तो हम एह मंगल कामना के साथ कि हमार सभन श्रोता लोगन आपन आपन परिवार जोड़े स्वस्थ सानंद रहस, हमार मने राहुल विनीता के निहोरा बा कि हमरा के जाय देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम के 6:10 पर, रात के 8 बजे और रात के 10:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा।

बजकर 52 मिनट पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे भजन चक्रपाणि मिश्रा की आवाज में। एक बार फिर सुगम संगीत आप सुनेंगे रात के 8:30 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गीत अनूप कुमार की आवाज में।

सोमवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात के 10 बजे। कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन राग शुद्ध कल्याण।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे कुछ ही पलों में।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। राज्य सरकार अब आम लोगन के शिकायत के जल्दी निपटावे खातिर हरेक महीना के दूसरका मंगर के दिने पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर लगाई। इस शिविर के शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में स्थित संवाद भवन से हुई। ई खास शिविर ओह लोग खातिर रही जे जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज करावे के बादो समाधान से संतुष्ट नहीं। शिविर में चुनल गईल आवेदकन के शिकायत के समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर हुई। आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कइल जा सकेला। आवेदक अपना पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर आ मोबाइल नंबर पर मिलल ओटीपी के मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकेले। चुनल गईल आवेदकन के शिविर के तारीख समय आ दोसर जरूरी जानकारी SMS के माध्यम से भेजल जाई। और जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 पर मिल सकेला। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज 125वीं जयंती मनावल जा रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकरा के श्रद्धांजलि देवे के बेरा कहलन कि डॉक्टर मुखर्जी साहस राष्ट्रवादी आ निस्वार्थ सेवा के अमर प्रतीक रहले। गृहमंत्री अमित शाह कहलन कि ऊ राष्ट्र के एकता अखंडता आ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मजबूत समर्थक रहले। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन के महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई गो वरिष्ठ नेता उनकरा के श्रद्धांजलि अर्पित कैलन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नीट UG परीक्षा के फीस वापसी करे खातिर बैंक खाता के विवरण अपडेट करे के समय सीमा ए महीना के 7 जुलाई तक बढ़ा देले बा। एजेंसी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बतौले बिया कि जे उम्मीदवार अपना बैंक खाता के जानकारी के पुष्टि कर देले बड़े ओह लोग के रिफंड प्रक्रिया शुरू कर देहल गइल बा। राज्य सरकार 16वां वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य के ग्राम पंचायतन में हर घर से साले साल 1200 रुपया टैक्स वसूली के लेके विरोध दर्ज कैले बिया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलन कि पंचायती राज मंत्रियन खातिर आयोजित कार्यशाला में ए फैसला के बिहार नियन राज्यन खातिर ढील देवे की मांग कैल गइल बा। पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होखे वाला उपचुनाव खातिर अधिसूचना जारी होके के साथे आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गइल बा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेले। 14 जुलाई के नामांकन पत्रन के जांच हुई। नाम वापसी के आखिरी तारीख 16 जुलाई बा। मतदान 30 जुलाई के हुई जबकि मतगणना 3 अगस्त के करावल जाई। मालूम होके कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देला के बाद इस सीट खाली भइल रहे। जन सुराज ए पार्टी इस सीट से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार घोषित कैले बिया। राष्ट्रीय

0: जनता दल रेखा गुप्ता के उम्मीदवार बनौले बिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आज पटना में पत्रकार सम्मेलन में ई जानकारी देलन। बताओल जरूरी बा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद रेखा गुप्ता के ही उम्मीदवार बनौले रहे। एनडीए के तरफ से भी इस सीट पर जल्दी उम्मीदवार के नाम घोषित करे के संभावना बा। प्रदेश में पटना सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाका में बरखा हो रहा बा। मानसून के सक्रिय होखला से प्रदेश के बाकी हिस्सन में भी बरखा के स्थिति बनल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक अगला चार दिन तक राज्य में बरखा होखे के अनुमान बा। विभाग काल कटियार और किशनगंज जिला में बहुत बेसी भारी बरखा बरसे, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिला में भारी बरखा के चेतावनी जारी कैले बा। वही जा पिछला 24 घंटा के दौरान भागलपुर में सबसे बेसी 47.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड दर्ज कैल गैल बाटे। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बिहड़ा मोड़ लगे ट्रक के चपेट में आवे से ऑटो रिक्शा पर सवार दू गो महिला के मौत हो गई, जबकि 10 जने घायल हो गए बने। उन्हें भोजपुर जिला के बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जौना से चालक के जान चल गई। यह बीच दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन के चपेट में आवे से मोटरसाइकिल सवार एगो युवक के मौत हो गई बा, जबकि दू जने गंभीर रूप से घायल बड़े। वह अररिया जिला के बैरगाछी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 327 ई पर पुलिस वाहन जांच अभियान के दौरान एगो कार से भारी मात्रा में शराब बरामद कैले बिया। ये मामला में दू गो शराब तस्कर के भी गिरफ्तार कैल गैल बा। एक साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आप सुनिए रूप कुमार राठौड़ की आवाज में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के इस गीत को। संगीत सलीम सुलेमान का है और गीतकार हैं जयदीप सैनी।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए अभिजीत की आवाज़ में। फिल्म है दिल लगी, संगीत जतिन ललित का है और गीतकार है जावेद अख्तर।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनम् परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबंधनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300 विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात कोंकण गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 2018-तमवर्षात् द्विपक्षीय सम्बन्धानां व्यापक रणनीतिक सहयोगस्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय सम्बन्धानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मन्दिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8 10 यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः एंथनी अल्वनीज इत्यस्य निमंत्रणं स्वीकृत्य

0: सोमा दीदी।
1: निमिषा बहन, आपको भी नमस्कार। और बताइए निमिषा बहन, क्या हाल चाल है?
0: हाल चाल एकदम निमन दिया। देखा बारिश हो गई तो मौसम भी
1: हाँ
0: खूब निमन हो गए, तो देखकर
1: एकदम,
0: हमनी के जरूरत हले कहे कि खास करके हमनी के राज्य में बारिश के इंतजार बहुत लोगों के आंखें तरस गई है कि कभी
1: एकदम
0: करिया बादल हम बरस जाए।
1: सही बात है। गर्मी से तो
0: हाँ
1: एकदम हाल बेहाल था। इतने में थोड़ी सी बारिश जो होती है ना, राहत देती है।
0: एकदम
1: और जब मन को कुछ भी राहत मिलता है तो मन भी अच्छा रहता है, खुश रहता है, और सब काम जो है अच्छे ढंग से हो जाता है। और मन में खुशी तभी होती है जब हम लोग कोई भी काम को करते हैं, सबके साथ मिलकर करते हैं, और उससे अपने खुशी के साथ साथ परिवार और आसपास जितने भी लोग हैं उनको
0: हाँ
1: भी खुशी होती है।
0: एकदम। देखिए आसपास के बात कर ले, हमने समाज के बात कर ले, तो देखिए समाज में हमने के मिलजुल के रहे के चाहिए। कोई भी काम रहे वैसन काम करे के चाहिए, वैसन नियम अपनावे के चाहिए जे सबके खुशी दे।
1: एकदम, कहा भी गया है ना कि हर दुख सुख में अगर हम लोग साथ मिलकर
0: हाँ
1: रहेंगे तो दुख तो कट भी जाएगा, खुशी दोगुना हो
0: दोगुना हो
1: जाएगा।
0: जाए। और हमने के जो काम रहे रीति रहे ओकरा में कई तरह के रीति है जो हमने के संगे मिलके करे ही, लेकिन आर जेकर हमने पालन भी खूब अच्छा कहल जाए ओकरा करे ही कि ना ये तो परंपरा शुरू से चल आ रही है तो हमने के ई निभावे के चाहिए।
1: एकदम।
0: लेकिन देखा दीदी परंपरा तो सही बात है कि हमने के निभावे के चाहिए, लेकिन आंख बंद करके कोई परंपरा निभा रही है ओकरा के वैज्ञानिक कारण ना समझ के ओकरा के बस शुरू से चलल आ रही उ परंपरा के निभाए चाहे केकरो ओकरा से कहे ना नुकसान हो,
1: नुकसान, हाँ बिल्कुल।
0: तो उ परंपरा हमने के उ रीति जो है उ रीति ना
1: वो
0: कुरीति ही
1: कुरीति
0: करे
1: बन जाती है।
0: एकदम।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि कई ऐसे सामाजिक काम है, कई ऐसे सामाजिक रीति है जो सामने या अपने लिए वो रीति ना रहकर कुरीति हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो, जैसे कि आपने कहा निमिषा बहन, कि जो शुरू से चला आ रहा है

0: जरूरी नहीं है कि वो सही है,
1: एकदम
0: एक ना एक दिन, एक ना एक समय उसको बदलने की जरूरत
1: हाँ
0: है। और हम लोग चूंकि मनुष्य है और हम लोग को इसी समाज में रहना है और
1: एकदम
0: हम लोग सभी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में किसी भी समाज में रहते हैं, तो समाज में रहकर तभी हमारा विकास संभव होगा। और जब हम लोग अपनी सोच बदलेंगे,
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: अपने व्यवहार को बदलेंगे, तभी विकास संभव है।
1: एकदम दीदी, हमने के अज्ञानता या अंधविश्वास या हम अपन संकीर्ण सोच के कारण अगर कोई रीति के अपना रहिए तो हमने के नापना बे के चाहे, जैसे कि दहेज पड़ता कहीं, कन्या भ्रूण हत्या, जातिवाद, छुआछूत, ये रूढ़िवादी जो है वे केकरो ज्ञान कह के उनका के प्रताड़ना करके,
0: प्रताड़ना करना, बिल्कुल
1: तो इस तरह के परंपरा दीदी हमने के समाज के खोखला ही करे है।
0: एकदम। और समाज की उन्नति तभी होगी निमिषा बहन, जब हम उसमें अच्छे संस्कार,
1: हाँ
0: समानता और नैतिक मूल्य को अपनाएं। लेकिन हमारे समाज में, जैसा कि आपने कहा, कुछ ऐसी गलत परंपराएं हैं, कुछ ऐसी हानिकारक प्रथाएं फैल रही है, जैसे कि आपने कहा कन्या भ्रूण हत्या।
1: हाँ हाँ
0: अब समाज बदल गया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। पहले होता कि अगर परिवार में लगातार तीन चार लड़कियां पैदा होती है तो
1: हाँ
0: अगली जो लड़की है, अगला संतान अगर लड़की हो तो ऐसे में लोग भ्रूण हत्या करते हैं। लेकिन ये सब सोच को बदलना है, क्योंकि आजकल लड़कियां, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है।
1: एकदम
0: हाँ, जैसे लड़के आगे बढ़े हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, और ये कुरीतियां जो है समाज की प्रगति में बाधा भी बन रही है और लोगों के जीवन को प्रभावित भी करती है।
1: एकदम दीदी। और जैसे न कि अपने कन्या भ्रूण हत्या की बात कर लिया, आजकल हमने इसको सोचे कि लड़का हो तो वंश चले, तो यही चलते लोग लड़का के अपनावे के चाहते कि ना लड़की ना लड़का
0: लड़का
1: चाहिए,
0: चाहिए,
1: तो
0: हाँ,
1: इस तरह की भ्रूण हत्या हमने ना कर चाहिए। संगे संगे दहेज भी एको देखा,
0: बहुत
1: बहुत लोगों के
0: बिल्कुल।
1: तो ये सोचे हुए कि दीदी कि हमारा बेटा के जितना दहेज मिले उतने सम्मान हमने के समाज में,
0: सम्मान सही बात
1: तो ये
0: है
1: सोच बहुत संकीर्ण सोच है
0: एकदम।
1: एकदम। एकरा क्या कहा जाए कि एकरा के ना अपनावे के चाहिए, कहे कि जो दहेज होवे है अपने के भी कोई बेटी होती, अगर वो दहेज जब देवल जाए तो सोचल जाए कि ना ये कैसे, और जो
0: अपने
1: बीवी
0: के
1: के बारी है तो
0: संग,
1: खूब हमने के चाहिए
0: हाँ,
1: भरपूर
0: भर पेट चाहिए, हाँ, जब देने।
1: दहेज।
0: तो ये सब जो चीजें
1: हाँ
0: हैं ना,
1: हाँ
0: इन सब चीजों को बदलने की आवश्यकता है, और ये तभी बदलेगा जब हम अपनी सोच को
1: बदल
0: बदलेंगे। और ये प्रथा, ये रीति रिवाज, लोग ये भी कहते हैं ना कि अरे बाप, फलना के घर में उनके बेटे की शादी में इतना कुछ आया, मेरे घर में नहीं आएगा तो समाज में मेरा स्थान नीचे
1: नीचा
0: हो जाएगा, लोग थू-थू करेंगे। ये बिल्कुल नहीं। अगर आप एक शिक्षित लड़की को अपने घर लाते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा धन
1: धन
0: है।
1: है एकदम।
0: ये सब जो रुपये पैसा, ये धन कुछ दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप संस्कारी हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, तो वही आज के समय में सबसे बड़ा धन है।
1: एकदम दीदी। और जो छुआछूत के बात करी तो आजकल जैसे समानता के समय है, हमनी के शिक्षा मिल रही है कि सब चाहे कोई भी जाति के रहे, कोई भी धर्म के रहे,
0: धर्म के
1: हमनी
0: रहे,
1: के देश भी यही धरती पे चले हैं कि
0: हाँ,
1: आधार पे कि हमनी के सब लोग यहाँ पे एक समान हथिन,
0: एकदम
1: तो हमनी के कोई भी जाति के रहे लोग के मानव, हमने मानव ही अमानव के पहला धर्म है कि हमने अपना मानवता निभाई।
0: एकदम। और इसी
1: तो
0: में एक अंधविश्वास की भी बात करें तो लोगों में कई तरह के अंधविश्वास भी होते हैं। अब आप जा रही हैं सड़क से, अचानक बिल्ली रास्ता काट दे,
1: हाँ
0: तो ये सब छोटी छोटी, ये सब के पीछे ये कह कह सकते हैं कि ये अनायास हो जाता है। अब है कि वैज्ञानिक युग है, हाँ, हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे में डिजिटल युग में अगर ये सब बातें हम रखेंगे तो फिर हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाएंगी।
1: हाँ तो मतलब हमने के तर्क करे के चाहिए कि आगे
0: हाँ
1: पहले गुलग में कहा रहे कि सांझ
0: हाँ
1: के घड़ी झाड़ू ना देवे के
0: हाँ
1: चाहिए, तो ये तो वो घड़ी है कि जब बत्ती ना हल लाए ना हल तो सब जल जाले कि कोई कीमती चीज भुला ना जाए, तो ई सब अंधविश्वास की हमनी के साफ सफाई ना रखे के चाहिए कि रात हो गए, तो ये तो गलत बात है दीदी। तो यही सब छोट छोट ऑब्जेक्शन बिल्ली के बात करनी, तो पहले के लोग बिल्ली जब जा रहे तो सोचल जाले कि कोई हिंसक पशु है जेकरा घबरा के बिल्ली जा
0: बेच
1: रहा
0: जा
1: है,
0: रहे हैं, हाँ,
1: रास्ता से ना जाए, लेकिन वही परंपरा हमने के चलते आ रही है। कोई निमन काम करे जा रही है, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो काहे ना काम काम ना हो पूरा, लेकिन हम वो रास्ता ना जाए,
0: नहीं
1: गलत बात है दीदी।
0: साथ ही साथ हाँ निमिषा बहन, हमारे समाज

0: आज में लिंग भेद बहुत हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: लड़का लड़की। हाँ, लड़का है तो उसको सब छूट आप दे रहे हैं, सब कुछ करने, लेकिन
1: हाँ
0: लड़की है तो यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जिस तरह आप लड़की को समझाते हैं कि एक दायरे में एक समय पर आपको आना है, एक समय पे आपको जाना है, ये उसी तरह लड़के को भी आपको समझाना होगा। क्या सिर्फ गलतियां लड़कियों से ही होती है?
1: ना
0: नहीं, लड़के भी गलती करते हैं।
1: एकदम
0: तो दोनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बचपन से ही आदत डालनी होगी
1: हाँ
0: कि अगर लड़के के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करे, तो लड़की के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सोच हम रखेंगे तो अभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और ये जो लिंग भेद है ये बहुत हद तक
1: अब
0: कम
1: कम
0: हो
1: हो
0: सकता
1: जाते
0: है।
1: हैं। तो हमने के दीदी देख सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमने के समाज में कोई भी अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार है ओकरा बढ़ावा ना देवे के चाहिए। हमने के कानून के जानकारी भी रखे चाहिए, जैसे
0: एकदम।
1: हमने भारत सरकार के बनावल गेल बाल विवाह निषेध अधिनियम रहे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम रहे,
0: सही
1: तो
0: बात
1: ये
0: है।
1: सब के भी जानकारी रखे के चाहिए। और जहाँ कोई कुरूति हो रही है ओकरा के हमने के बहुत हद तक हो सके तो रोके के
0: रोकना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: हाँ,
0: हाँ।
1: और घर में परिवार में तो ये बिल्कुल ना होके चाहिए कि आज हमने सब जागरूक हो रही है, हमने सब शिक्षित हो रही है, का से का कारण है हमने सब जाने ही। तो
0: एकदम।
1: हमने की ये शिक्षा जो है सबसे बड़ा उपाय है हर लोगन के, चाहे लड़का है रहे या लड़की रहे, परिवार में कोई भी रहे उनका के शिक्षा जरूर लेवे के चाहिए।
0: सही बात है।
1: और घर में ऐसा माहौल बनावे के चाहिए कि जहाँ पे कोई भी सामाजिक समस्या है लेकिन से बड़ बुजुर्ग से बातचीत करके,
0: बातचीत,
1: हाँ
0: हाँ,
1: करते
0: सबसे
1: रहे,
0: बड़ी
1: हाँ
0: बात है।
1: तो सबके दृष्टिकोण बने बच्चे, मतलब एक नया दृष्टिकोण अपनावे है
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: तो।
0: आजकल के जो युवा हैं उनके सोच में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत ये, मतलब कहते हैं ना, खुले विचार, अच्छे अच्छे विचार उनके बीच आ रहे हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ा जो बाधा है वो भेदभाव और अज्ञानता के कारण ही, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो देश है उसकी प्रगति धीमे हो रही है। तो इससे कैसे बचा जाए? कि हम लोग शिक्षा का प्रसार करें, वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, अंधविश्वास से बचे और तर्क और विज्ञान पर विश्वास करें।
1: एकदम
0: और जैसा कि आपने कहा, कानून तो कानून का पालन करे, महिला सशक्तिकरण, जन जागरूकता अभियान चलाए और युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा हो, और तभी समानता का व्यवहार हो सकता
1: एकदम
0: है।
1: दीदी
0: तो ये तो बात हुई कि समाज में रहने के लिए हमको इन सब चीजों पर सोचना है और सामाजिक कुरीतियों से बचना है।
1: तो देखा दीदी कुरुति के बात करी तो हमने के इस समय भी वो रीति है कि हमने सब कोई भी शुभ काम से बात करे तो भजन कीर्तन करे
0: एकदम।
1: और भगवान के नाम जरूर ले, तो कहे नया कुरुति छोड़ के निमन रीति अपनाई और
0: एकदम।
1: सुनल जाए ई लोक भजन
0: कलाकार हैं विष्णुकांत पाठक तरुण, सुनते हैं लोक भजन।
1: सुनल जाए।

0: तो हम लोग सुन रहे थे विष्णुकांत पाठक तरुण से ये लोक भजन, और श्रोताओं आगे भी इनसे हम लोग गीत सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद
1: सुनल जाए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: दुनिया।
1: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर एक सप्ताह के बाद आ गया दिन सोमवार का और कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। युवा साथियों, आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं जिससे आपको करियर में क्या चुनना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राज्य में यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, ढेर सारी जानकारियां हम विशेषज्ञ से दिलवाते हैं और लगातार सजग रहते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। एक बात हमेशा राजेश कहता है आपसे कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ लीजिएगा ना तो प्लेन स्टडी सीधे सीधे पढ़ने से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। जी हाँ, आप स्वव्यवसाय भी कर सकते हैं, आप सरकारी और निजी क्षेत्र में जाकर रोजगार भी तलाश सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है। बीएड एक हॉट केक है, बीएड हाँ, बैचलर ऑफ एडुकेशन, जी हाँ, बीएड एक हॉट केक है। इसमें एक नया तो नहीं कहें लेकिन बहुत ही उम्दा कोर्स आया है, बीएड स्पेशल एडुकेशन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, हमने पहले भी चर्चा की है, रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अवनीश रंजन को बुलाया है, बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि ये कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार में और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में हम चाहते हैं कि कोई भी युवा इस बात से अनजान नहीं रहे।

0: माना है, इसलिए उसे चुनना चाहिए टेक्निकल पढ़ाई को। हम एक फोन नंबर भी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है, जो टेक्निकल पढ़ाई का एक हब है और मेडिकल यानी MBBS और PG जो है मेडिकल का, उसकी पढ़ाई के साथ साथ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई है जो यहाँ कराई जाती है सक्सेसफुली। पैन इंडिया टीचर्स हैं और पैन इंडिया अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो अनर्थक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें। कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आपके राज्य में मिल रही है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने एक नंबर लिया है जो आपके लिए है, जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001। एक बात और बताते चलें, तब हम डॉक्टर अविनीश रंजन को बुलाएंगे और पूरा उनके विषय में जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब यहाँ के लोग जो प्लेसमेंट सेल है ना, आपके रोजगार के लिए भी सजग है, उसमें आपको 100% असिस्टेंस देता है। बहरहाल डॉक्टर अविनीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुनने वालों को और पूरा परिचय आप अपना दीजिए।
1: मेरा नाम डॉक्टर अविनीश रंजन है और मैं फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे हूँ। और हमारे फैकल्टी में मुख्यतः दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक रिहैबिलिटेशन के जिसको पुनर्वास विज्ञान बोलते हैं, दूसरा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं।
0: डॉक्टर अविनीश, एक बात हम सबसे पहले अपने पूरे बिहार और झारखंड के युवाओं, उनके माता पिता के लिए पूछना चाहते हैं कि बीएड हॉट केक है, लेकिन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये कहाँ अलग है और कौन ज्यादा है? बीएड स्पेशल एजुकेशन कहाँ है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे, जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: तो एक बात तो यहाँ हम कह सकते हैं, अविनीश जी, आपके सामने या आपसे जो बातचीत हो रही है, जो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के बारे में बताया, कि हमें लगता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो एक कदम आगे है बीएड से, क्योंकि इसमें समग्र यानी वैसे बच्चे जो सही हैं, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनमें कमी है, उनके लिए, उनके लिए भी बीएड स्पेशल एजुकेशन में तैयारी करवाई जाती है, प्रोफेशनल तैयार करवाए जाते हैं, क्या कहते हैं?
1: जी, अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो जब आप सिलेबस देखेंगे, करिकुलम इनका जो बना है, उसमें वो सारे पेपर्स हैं जो जनरल बीएड एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावे स्पेशल पेपर्स कुछ हैं जिसमें दिव्यांगता के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके

0: ज्ञान के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक क्रियाकलाप वो कैसा करते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, होम बेस्ड एजुकेशन जो गृह आधारित शिक्षा होती है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करेंगे उसके बारे में, ये सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करके और एक कम्पैक्ट प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं और ये कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं।
1: सोमवार का दिन है, कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनीश रंजन। बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातचीत चल रही है, एकदम हॉट केक है। जी हाँ, बीएड स्पेशल एजुकेशन, इस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं।

0: बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनीश रंजन। बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातचीत चल रही है, एकदम हॉट केक है। जी हाँ, बीएड स्पेशल एडुकेशन, इस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं टेक्निकल क्षेत्र में, इसके अलावा एएनएम, जीएनएम, फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करके आगे ला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अविनीश, एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को। और आपसे भी कह रहे हैं, जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए और तब निर्णय लीजिएगा।
1: आज से, जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है, उससे पहले 2 साल के बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी तरीके से 2 साल के स्पेशल एजुकेशन बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो उसका ये कंपल्सन था कि हर एक बीएड कोर्स को इंटीग्रेटेड बीएड में ट्रांसफर किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब यह हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड की पढ़ाई होगी, मतलब बच्चों का एडमिशन प्लस टू करने के बाद एडमिशन होगा, जिसको आईटेप बोलते हैं, जनरल बीएड को। आईटेप का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इजी टेप बोलते हैं ISITEP, जो स्पेशल बीएड के प्रोग्राम होते हैं, उसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंड स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये 4 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्स में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, अगर साइंस का लेना है, साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो साइंस के पेपर, आर्ट्स में करना है तो आर्ट्स के पेपर, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स के पेपर, साथ साथ बीएड के भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बीच में पढ़ाए जाते हैं। और ये ड्यूअल डिग्री वाला कोर्स है, मतलब जब आप ये इजी टेप या जिस इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी, मतलब 4 साल में 2 डिग्री लेके आप निकलेंगे।
0: बहुत खूब। हमने पहले कहा था ना युवा साथियों कि बीएड स्पेशल एजुकेशन बहुत ही उम्दा कोर्स है। आप राजेश की बात सुनते हैं और आज से नहीं, 20 साल से आपके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं, और जानकारियों के आधार पर बहुत सारे युवा रोजगार में आ गए, करियर में आ गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बीएड स्पेशल एडुकेशन बहुत ही उम्दा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हाँ, नंबर नोट करें जिस पर आप फोन करेंगे, 1800-121-0051, 1800-121-0051, और 9431899002। बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं अपने राज्य बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का हब वाला यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार। हम एक उन्नत और सुरक्षित बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अवनीश जी, 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, लेकिन समय आज के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं बचा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चे युवा यही चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए कहां कहां और किधर जा सकते हैं, हालांकि आपने अभी बताया है।

0: लेकिन फिर से बताइए।
1: मैंने पहले कहा कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे ICSE और CBSE के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
0: बहुत ही उम्दा व्यवस्था है रोजगार के लिए, इसके अलावा भी है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आने वाला एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं आज आने वाला यानी आने वाला सोमवार जरूर हमें ट्यून कीजिएगा, और भी जानकारी देंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोजगार की और कहां कहां संभावनाएं हैं, और चर्चा करेंगे अगर जो आपके फोन कॉल आए और आपने जो हमसे सवाल पूछा। बहरहाल बीएड स्पेशल एडुकेशन एकदम हॉट केक है, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में, रोजगार के लिए। नंबर नोट करें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर है 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज का हब जमुआर सासाराम रोहतास में। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, सोमवार को मैं भी होऊंगा और डॉक्टर अविनीश भी होंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ तो दीदी, अभी हमने सब सुन रही हल प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और ये के संग हमने के चौपाल के समय संपन्न हो गए, और हमने सब थोड़े देर में बातचीत कर भी खेती गृहस्थी में।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
5: तो निमिषा बहन, खेती गृहस्थी में हम लोग खेती संबंधी बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: सुनल जाए।
6: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
7: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477।
8: मित्रता या दोस्ती दो या अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है। दोस्ती के रिश्ते को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर जवानों के बीच। दोस्ती का चुनाव जवानी में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आगे आपके भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में सहयोगकारी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम दोस्ती का रिश्ता किसी के साथ बना रहे हैं तो क्या वह व्यक्ति दोस्ती करने के लायक भी है या नहीं, क्या वह व्यक्ति उसकी आदतों में सही है कि नहीं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बुरा बना देती है। आइए हम एक कार्यक्रम के द्वारा देखें कि दोस्ती या मित्रता किस प्रकार एक जवान व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज राहुल का कॉलेज में पहला दिन है। सुबह सुबह राहुल कॉलेज जाने के लिए, नए मित्र बनाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित होकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलता है।
9: हेलो, तुम्हारा नाम क्या है?

0: मेरा नाम सुरेश है, तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम राहुल है।
0: कॉलेज में नए आए हो?
1: हाँ, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में।
0: हाँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं, एक ही महीना हुआ है। तो फिर दोस्त बनाए कि नहीं?
1: नहीं, अभी तक नहीं, आपसे ही बात हुई है अभी तक।
0: अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त। मेरी एक और दोस्त भी है, पिंकी, वो भी अभी आती होगी, मिलवाता हूँ उससे भी।
1: थैंक यू सुरेश। क्या तुम मुझे क्लास का टाइम टेबल और टीचर और कॉलेज से जुड़ी बाकी सारी चीज़ें बता दोगे?
0: इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कॉलेज आए हो, एक घंटा भी नहीं हुआ और अभी से इतनी टेंशन। पिंकी से तो मिल लो पहले।
2: हाय सुरेश, ये कौन है तेरे साथ?
0: अरे, ये आज ही कॉलेज में आया है, मेरा दोस्त है ये।
2: ओहो, नया दोस्त।
0: पिंकी, ये राहुल है। राहुल, ये पिंकी है।
1: हाय।
2: हाय।
0: देख पिंकी, दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ये मेरा दोस्त मतलब ये तेरा भी दोस्त।
2: बिल्कुल। तो फिर हम कैंटीन चलें?
1: कैंटीन पर? मैं तो घर से ही खाकर आया हूँ, और यहाँ क्लास कब होती है?
0: अरे यार, तू चल तो सही।
1: चलो ठीक है, चल।
0: और मजा आया कि नहीं?
1: हाँ, बहुत मजा आया, पर आज तो क्लास ही नहीं ली।
0: क्या यार, चिल मार, क्लास क्लास कर रहा है जब से। चलो घर चलते हैं, अब कल मिलते हैं।
1: माँ।
3: आ गया बेटा। तू कैसा रहा आज का दिन? पढ़ाई हुई? समझ आया कि नहीं कुछ?
1: नहीं माँ, आज कोई क्लास नहीं ली मैंने, ना कुछ पढ़ाई की, पर बस दोस्त बनाए और उनके साथ घूमा।
3: अच्छा, पर बेटा ये ठीक बात नहीं है।
1: अरे माँ, पहला ही दिन तो था। तुम भी माँ फालतू बातें कहती रहती हो।
0: राहुल, ये देख, नई फिल्म आई है, बहुत मस्त है भाई, तू जरूर देखना।
1: ये तो घर जाकर देखूंगा फुर्सत से, अभी तू सिगरेट दे मुझे।
0: ये ले।
1: पिंकी कहाँ गई?
0: अरे उसे पता नहीं क्या हो गया है, आजकल ज्यादा रुकती ही नहीं है।
1: तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
0: हाँ तबीयत तो ठीक है, आज बात करता हूँ उससे, क्या बोलती है।
1: हाँ बात करना, फिर बताना।
0: चल अब यार घर चलते हैं, लेट हो गई वैसे भी।
1: हाँ चल। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है और आज तो मैं बहुत ज्यादा ही थका हूँ।
3: हाँ बेटा, बस 5 मिनट, खाना बन ही रहा है। वैसे आज तो इतना कैसे थक गया?
1: वो आज कॉलेज में बहुत ज्यादा काम था माँ।
3: बेटा आज ये मुँह से अजीब सी, तूने सिगरेट पी है?
1: नहीं माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो।
0: राहुल कहाँ है तू?
1: हाँ भाई बोल, क्या हुआ, तू अचानक ऐसे घर आ गया?
0: हाँ जल्दी चल, तुझे कुछ बताना है।
1: भाई खाना खाकर चलते हैं ना।
0: अरे चल ना, बाहर खा लेंगे, अभी बस तू जल्दी से चल, जरूरी बात बतानी है।
1: अच्छा चल यार तू भी।
3: अरे बेटा खाना तो खाकर जा।
1: माँ मैं बाहर खा लूंगा।
3: क्या करूँ इस लड़के का, दिन ब दिन ये तो बिगड़ता ही जा रहा है और इसके दोस्त तो बिल्कुल सही नहीं है। हे प्रभु, अब तू ही इस लड़के को बुद्धि दे, इसके दोस्त इसको गलत रास्ते पर ना लेके जाए।
1: बोल भाई, क्या इतनी जरूरी बात करनी है तुझे?
0: भाई खुशखबरी है, खुशखबरी।
1: बता भाई जल्दी बता क्या है।
0: पिंकी तुझे पसंद करती है।
1: जा रहे मजाक मत कर।
0: अरे भाई सच्ची बोल रहा हूँ।
1: पर मैं कैसे मान लूँ?
0: रुक, मैं पिंकी को फोन करता हूँ। हेलो पिंकी।
2: हाँ सुरेश, तेरी बात हो गई राहुल से?
0: हो गई, पर ये मान ही नहीं रहा है।
1: हेलो हेलो पिंकी।
2: हाँ राहुल।
1: सुरेश सच बोल रहा है क्या?
2: हाँ सुरेश सच बोल रहा है।
1: पर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा?
2: बस ऐसे ही डर लग रहा था।
1: मुझसे डर? चलो कल मिलते हैं।
2: ओके बाय
1: बाय। सुरेश यार आज तो मजा ही आ गया।

0: चल फिर कल मिलते हैं।
1: पिंकी सुन, राहुल को यकीन हो गया है कि तू उसे पसंद करती है। अब बस कुछ समय तक यूं ही नाटक करती रहे, फिर उसको छोड़ देना। और कल जब तू राहुल से मिले तो उसे कहना वो तुझे नया फोन दिलाए।
2: ठीक है।
0: हेलो पिंकी। हेलो सुरेश।
3: हेलो
0: पिंकी, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो अपन दोनों कहीं घूमने चलें।
1: हाँ, अब मेरी थोड़ी याद आएगी।
0: नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पिंकी से कुछ बात करनी है।
1: ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ और मैं घर जा रहा हूँ।
2: बोलो क्या बात करनी है।
0: बहुत खुश हूँ मैं, आज की मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे पसंद करती है और मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है।
2: मैं भी बहुत खुश हूँ, पर राहुल एक बात बोलूँ?
0: हाँ बोलो ना।
2: यार मेरा फोन खराब हो गया है, मैं तुमसे बात कैसे करूँगी?
0: बस इतनी सी बात, नया ले आएंगे। और कुछ?
2: नहीं नहीं, थैंक यू राहुल।
0: चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ।
2: ठीक है, चलो।
1: हेलो पिंकी, काम हुआ?
2: हाँ हो गया।
4: बेटा आज तो इतने पैसे क्यों ले गया?
0: वो माँ, बस थोड़ा सा काम था।
4: ठीक है बेटा, खाना खा लेना, मैं जरा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो चंचल, कैसी है बेटा?
5: मैं ठीक हूँ माँ, आज इतनी देर हो गई, सोई नहीं आप?
4: बेटा आजकल रोज देर हो जाती है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेटा मैं क्या करूँ?
5: क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो?
4: बेटा राहुल आजकल सिगरेट पीने लग गया है, देर रात तक बाहर रहता है, फोन पर लगा रहता है। आज तो अलमारी से बिना बताए 10,000 रुपए ले गया। बेटा चंचल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है शुरू से ही, और अब बात बढ़ती जा रही है। बेटा हो सके तो तू आ जा, अब राहुल बस तेरी बात समझ सकता है।
5: माँ तुम परेशान मत हो, एक दो दिन में आती हूँ और राहुल से अभी कुछ मत कहना।
4: ठीक है बेटा।
2: हेलो राहुल।
0: हाँ पिंकी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है?
2: एक दिक्कत हो गई है राहुल।
0: क्या हुआ बताओ मुझे जल्दी।
2: यार राहुल मुझे ना 15,000 रुपए चाहिए थे।
0: यार पिंकी, अभी ही फोन के लिए पैसे लिए हैं, अब इतने पैसे, चलो चलो मैं सब करता हूँ, तुम परेशान मत हो।
2: ठीक है राहुल, थैंक यू।
0: ये लो 15,000 रुपए।
2: थैंक यू सो मच राहुल।
0: हेलो पिंकी, आज मिले क्या?
2: ठीक है राहुल। हेलो सुरेश, आज राहुल से मिलने जा रही हूँ।
1: ठीक है, मांगो फिर आज कुछ।
2: बिल्कुल।
0: पिंकी मुझे तुमसे कुछ कहना है।
2: कहो ना राहुल।
0: हमें अपने घरों में बता देना चाहिए अब, और शादी के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए।
2: ये क्या बोल रहे हो तुम राहुल? शादी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो, कोई शादी नहीं हो सकती, मैं घर जा रही हूँ, बाय। हेलो सुरेश।
1: हाँ बोल पिंकी।
2: यार वो राहुल वो तो शादी के लिए बोलने लग गया, मैं तो उठ के घर आ गई।
1: ये क्या बात कह रही है तू?
2: हाँ जब से आई हूँ तब से फोन पे फोन किए जा

0: रहा है।
1: एक काम कर, उसे सच बोल दे कि तू उसे पसंद नहीं करती, बस ऐसे ही आकर्षित हो गई थी कुछ समय के लिए, और फिर फोन मत उठाना।
0: ठीक है। हेलो राहुल।
2: पिंकी, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो, और ऐसे ही बिना बात किए क्यों आ गई? अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद बोल देना।
0: राहुल मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ना अब भी ना बाद में, मैं बस आकर्षित हो गई थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ मुझे, और अब मुझे फोन मत करना, बाय।
2: पिंकी सुनो।
3: राहुल कहाँ था, देख मैं आई हूँ तेरी बहन।
4: बेटा दरवाजा खोल।
3: राहुल पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है तू, दरवाजा खोल, बात तो सुन मेरी।
2: नहीं जीना और मुझे।
4: अरे राहुल बेटा क्या कर रहा है तू, ये सही नहीं कर रहा है।
3: अरे भाई ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जो घर वालों को नहीं बांटी जा सके, ये सब कायर लोगों के काम है, तो दरवाजा तो खोल, अरे बात तो सुन हमारी। तू तो अपनी दीदी को बहुत मानता है ना, मेरी बात नहीं सुनेगा क्या, एक बार दरवाजा खोल यार, बात करते हैं भाई बाहर आ।
2: दीदी वो पिंकी ने मुझे झूठ कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे छोड़कर चली गई, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ।
3: देख राहुल पहली बात तो वो लड़की तेरे लायक ही नहीं थी, और इस बात की वजह से तू खुद की जान ले रहा था, जैसे दोस्तों के साथ तू रह रहा था ना, उन सब के लिए तो ये सब आम बात है, तो तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है।
2: माँ प्लीज मुझे माफ कर दो।
3: और अब तू वादा कर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, और माँ को तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा।
2: थैंक यू दीदी।
5: तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ 8826224477। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: हाँ तो दीदी, अभी हमने सब सुन रही हल प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब हमने के बस किसान लोग इंतजार कर रहे थे, काज हमने सब जानकारी भेटवे।
1: बिल्कुल निमिषा बहन, जब हम तो खेती बाड़ी के साथ साथ, हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ मवेशियों को भी पालते हैं, पशुपालन भी करते हैं, और हमारा मवेशी हमारा पशु स्वस्थ रहे और उनसे जो भी हम लोग लाभ ले वो सही लाभ हम तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं अपने पशुओं का भी, अपने मवेशियों का भी ध्यान रखें। उनका वक्त पर खाना, उनका सही मात्रा में खाना, वक्त पर टीकाकरण, और जो भी हम उनको चारा देते हैं वो सही होना चाहिए। तो ऐसे में चारे की बात अभी हम लोगों ने की, तो चारे के लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही कह सकते हैं पोषक तत्व से भरे हुआ चारा होता है बरसीम।
0: हाँ, ये तो बात सही कर रहे थे। बरसीम के बात कर ला तो कहल जाए कि बरसीम जो है जो हरा चारा में सबसे निमन, मतलब ये कहा कि चारा के राजा कहल जाए।
1: एकदम
0: तो बरसीम में जैसे दुधारू पशु वाला, चाहे हमने के गाय रहे या भैंस रहे, उनका ला पौष्टिक रसीला प्रोटीन युक्त हरा चारा भेज जाए।
1: एकदम इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। कहते हैं कि जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है प्रचुर मात्रा में बरसीम में पाए जाते हैं, और इसके नियमित रूप से सेवन से पशु का जो है स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है, दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, और दूध की जो गुणवत्ता भी है वो बेहतर होती है।
0: तो दीदी देखा, इतना नीमन चारा है तो अगर हमने ये सब अपन खेत में एक उपजाई तो हमने के खरीदे के जरूरत ना पड़ते और
1: एकदम
0: हमने के पशु भी एकदम स्वस्थ रहते।
1: हाँ वही ना, चारे
0: हाँ
1: के लिए बरसीम की खेती चूंकि हमारे मवेशी को हम देते हैं तो जरूरी है कि

0: हम इसकी खेती करें। तो इसके लिए
1: देखो
0: क्या क्या करना होगा निमिषा
1: देखो
0: बहन?
1: दीदी, गलत तो सबसे पहले समय चुननी, काहे कि सही बरसीम की बुआई जो है एक सबसे निमन समय मानल जाए सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के तक,
0: प्रथम
1: हाँ
0: सप्ताह में।
1: प्रथम सप्ताह में। और एक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक अंकुर ला निमन मानल जाए है।
0: बिल्कुल। और इसके लिए ठंडी जलवायु बहुत ही उपयुक्त होती है।
1: हाँ
0: इसके लिए दोमट अथवा चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
1: और दीदी अगर खेती कर रहे थे ने तो हमनी के का किस्म के कर ली बरसीम के, ये बहुत जरूरी है, एक चुनाव भी करके चाहिए। तो एक उन्नत किस्म में वरदान जो है वो सबसे नीमन जो कहल जाए, जो राष्ट्रीय बीज निगम मतलब NSC द्वारा प्रमाणित कर गए है। और ये
0: एकदम।
1: किस्म जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और मेशका भी जैसन होबे है। एक में का फायदा है कि एकरा से हमने 5 से 6 बार कटाई ले सके ही,
0: अच्छा
1: तो ये केस में जो है ये बढ़िया होबे है कटाई
0: एकदम।
1: ला। और एक पूसा जाइंट और BL10 भी ई एगो बरसीम के किस्म है जो बहुत बढ़िया मानल जाए है।
0: निमिषा बहन, आपने तो बरसीम के किस्म के बारे में बताया है, तो इसमें ये भी ज़रूरी है कि जब हम इसकी खेती कर रहे हैं और जिस भूमि में हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें खेती करते समय ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। और जल भराव से कभी कभी क्या होगा कि फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है।
1: एकदम
0: और खेत की तैयारी के लिए अच्छे से खेत को, मतलब कहते हैं कि जुलाई माह में ही मिट्टी को धीरे धीरे भुरभुरी
1: कर
0: बना दिया
1: लेना
0: जाता
1: चाहिए।
0: है। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल किया जाता है और अंतिम जुलाई के समय में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से फसल की जो वृद्धि बेहतर होती है।
1: हाँ तो सही कहला दीदी। और हमने के जैसे बीज अगर रोपल है तो
0: हाँ
1: एकरा प्रति एकड़ पर मतलब हर एकड़ पे 8 से 10 किलोग्राम बीज के जरूरत होबे है। और खेती करे से पहले हमने के बीज के उपचारित कर लेवे के चाहिए। और मान मतलब जो बरसीम के बीज होबे ओकरा में कसनी के खर पतवार मिल रहा है, तो एकरा छांटे ला दीदी एक बहुत बढ़िया उपाय है। एकरा अलग करे ला बीज के 5 से 10% नमक के घोल में डाल देवे के चाहिए। तो एकरा से कहा हुए कि कासनी के बीज जो है ऊपर तैरे लगे हैं, और ओकरा के हमने सब छान के अलग कर सके ही, और फिर बरसीम के बीज के साफ पानी में धो सके ही।
0: बिल्कुल। सिंचाई जो पहली सिंचाई होती है बुआई के तुरंत बाद, बाद में सिंचाई की आवश्यकता अनुसार की जाती है। बरसीम को समय समय पर पर्याप्त नमी मिलती रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। और जैसा कि आपने कहा खरपतवार, तो खरपतवार के साथ साथ रोग नियंत्रण के लिए भी आवश्यक जो कीटनाशक है उसको भी कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित दवा का उसमें छिड़काव करना चाहिए।
1: हाँ और देखा बरसीम के फास्फोरस के ज़्यादा जरूरत होवे है, तो आखिरी जुताई घड़ी हमनी के हर एकड़ 22 किलो यूरिया पे 128 किलो सिंगल सुपर फास्फेट नीमन से मिला देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल। तो ये तो बात हुई
1: हम
0: कि चारे के लिए किस तरह से बरसीम की खेती की जाए, तो अपने किसान भाइयों के लिए चलिए सुनते हैं एक कृषि गीत
1: हाँ
0: विष्णु
1: हाँ
0: कांत पाठक तरुण की आवाज़
1: सुन
0: में।
1: जाए।

0: वाह, सही में दीदी, धरती के देवता किसान है तो जरूरी हथिन।
1: हाँ
0: हाँ
1: बीइंग के लिए भी या दोनों के लिए इससे बचाव के लिए जो टीकाकरण है,
2: किसके बचाव के लिए मैं जानना चाहूंगा कि
1: मतलब किसी तरह के
2: जी, ये जैसे हम
1: जो
2: लोग रेबीज
1: संक्रामक
2: का डर
1: रोग
2: रहते
1: हैं,
2: हैं।
1: रेबीज का हो गया या फिर
2: जी, दोनों में होता है, रेबीज या डेंगू।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
1: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष

0: मंगनी लाल मंडल ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
1: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कराऊंगी।
0: गौरतलब है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें 46,000 से अधिक मत मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रही थीं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एनडीए की ओर से भी इस सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए का किसी भी दल से मुकाबला नहीं है।
2: लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनौती।
0: इधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी।
3: बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो सीट खाली हुई है और उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से ज्यादा वोट से जीतेगा। वोट में हम आगे रहेंगे, आरजेडी कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़े।
0: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला में उन्होंने बिहार जैसे राज्यों के लिए इस व्यवस्था में शिथिलता बरतने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी इस व्यवस्था पर असहमति जताई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आम लोगों पर इसका आर्थिक न्यूनतम रहे।
4: पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस ओएसआर को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
5: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए नगद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के नगद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। अब 5000 रुपये या उससे अधिक की निकासी करने पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होगा।

0: के साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाला राष्ट्रनायक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बिहिया पीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु

0: हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के पहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरगांव में पुलिस टीम को बंधक बनाए जाने के मामले में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 54 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवहर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 महिला समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने विशनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। SSP 21वीं वाहिनी बगा का 24वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर जिले के सभी 151 पैक्सों में आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में समितियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा पेश किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: किशनगंज के नए जिला पदाधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारी नवीन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा प्रशासनिक, विकासात्मक और विधि व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा तथा सीमावर्ती जिला में प्रशासन और पुलिस के बेहतर समन्वय पर भी बल दिया।
3: सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो प्राथमिकताएं हैं उनका हम लोग निष्ठापूर्वक, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करें और आगामी जो वार्ड है उसमें उसको लेकर जो भी प्रभावी नियंत्रण है उसी के लिए सब लोग जो है लगातार हम प्रयास करेंगे और बाकी जो विकास के कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के जो भी प्राथमिकता है उनका निर्वहन करें।
2: मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीते दिनों जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संभावित बाढ़ एवं नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुहिया स्थित रेतुआ नदी के कटाव स्थल पर चल रहे कटाव विरोधी कार्यों की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को

0: समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बेनुगढ़ में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज भारत नेपाल सीमा पर फतेहपुर एसएसबी बीओपी टेढ़ागज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना और प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ राहत सुरक्षा और विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इधर नेपाल क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण मेची नदी का जलस्तर बढ़ने से नेपाल भारत सीमा पर एसएसबी के बक्सरविटा सीमा चौकी बाढ़ की चपेट में आ गई। एसएसबी ने त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी जवानों हथियारों गोला बारूद तथा सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभियान के दौरान 15 कर्मियों को सुरक्षित निकालकर अन्य सीमा चौकियों पर स्थानांतरित किया गया। सीमांचल की बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज चतेरहाट नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य शुरू हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की विस्तृत योजना भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जून माह में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1 से 30 जून तक चले अभियान में 239 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में ब्राउन शुगर स्मैक और गांजा के साथ 2000 लीटर से अधिक विदेशी एवं देशी शराब बरामद की। अभियान के दौरान कई वाहन 49 मोबाइल फोन भारत और नेपाली मुद्रा तथा 83 मवेशी भी जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14,52,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। जिले में बीते दिनों बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सिपाही चालक पद की लिखित परीक्षा जिले के 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नशा मुक्ति सप्ताह के समापन पर खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई तथा लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले के 7 प्रखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। जीविका और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल की 132वीं बटालियन के तत्वाधान में खगड़ा स्थित बीएसएफ मुख्यालय के खेल मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। डायमंड जुबली वर्ष के अवसर पर आयोजित सह प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी। अधिकारियों ने युवाओं से खेलों के माध्यम से अनुशासन भाईचारा और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किशनगंज में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया, दीप प्रज्वलित किया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिले में मुहर्रम शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की गई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्र पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 3,22,826 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के लिए 1050 टीमें 2092 टीकाकर्मी और 315 सुपरवाइजर तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए भजन चक्रपाणि मिश्रा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे भजन चक्रपाणि मिश्रा की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ में बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म के इस गीत को। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश गदर एक फेक प्रेम कथा फिल्म से, उदित नारायण, प्रीति उत्तम और राकेश की आवाज़ में। संगीत उत्तम सिंह का है और गीतकार है आनंद बख्शी।

कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है दांतों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं, कारण और निदान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 15 जुलाई 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222-500 एवं 0612-4026349। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-2222-500 और 0612-4026349। रिकॉर्डिंग की तारीख 15 जुलाई 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गाना सुनिए उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ में। फिल्म है हीरो नंबर 1। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए सचेत टंडन की आवाज़ में। फिल्म है यारियां टू। संगीत मनन भारद्वाज का है और गीतकार हैं मनन भारद्वाज।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। संगीत आनंद राज आनंद का है और गीतकार हैं देव कोहली।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में। फिल्म है मोहरा, संगीत फिजू शाह का है और गीतकार हैं इंदीवर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गीत अनूप कुमार की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गीत अनूप कुमार की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले

0: वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
4: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
5: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी

0: का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है।

0: मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय

0: are issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वुजरा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वजीर आजम के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि ये दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید

0: इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा के रुकन शमक भट्टाचार्य और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मौजूद शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संगे बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाब्तगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरूरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों बुजुर्गों ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 2 जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और CEO नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर हैं 0112331048123

0: 7 1 7 1 7 2 3 7 1 7 1 0 6। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। ये दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी 2 जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: इसमें मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोड़े खिसकने से कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद खानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खा अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जज्बे खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोख के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। ये सोख सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सिएटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2-3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 गोल से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उपरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड।

में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं। किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिक

0: को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है। और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी 1 मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
1: ठीक है
0: क्यों, ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है,
1: जी
0: रिटर्न कॉल
1: जी
0: नहीं
1: ये
0: होती
1: सबसे
0: है।
1: बड़ी बात है जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने
1: ट्रेस
0: की
1: कर
0: कोशिश
1: लेगी
0: हो जाती है,
1: जी
0: रिकॉर्ड मिल जाता है,
1: जी
0: तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं, आपको 1 मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है। और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका
1: जी
0: क्या
1: जी
0: आता
1: जी
0: है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं, तो
1: जी
0: आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा
1: आ
0: है,
1: रहा है जी
0: कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो। उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए,
1: बिल्कुल
0: अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल
1: कॉल
0: आपको
1: करता
0: 1 मिनट में कॉल करते हैं,
1: बिल्कुल, अगर
0: रिटर्न
1: ऐसा
0: कॉल
1: समय
0: जब
1: नहीं है
0: करेंगे, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं होगा।
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है,
1: जी रवि
2: मैं
1: जी
2: गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी
2: जी। सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
2: हाँ
0: नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है, वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे, और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET
1: जी
0: नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं,
1: जी
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में जितने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए, तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in से every 2 और इवन 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित

0: कर चुका है और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से, अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज, ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
3: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, आप कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन्स है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन। विपिन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
4: सभी को नमस्कार
1: जी,
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही है गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
0: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
0: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
0: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
0: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि

0: कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिविल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी सर।
0: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है, या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम, आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके, कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते

0: सकते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषिणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से, की फीचर फोन से किया, उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
3: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
3: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जो इतनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
3: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल। नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
0: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज

का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें। क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब

0: और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर लो कि ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा का। जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
3: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
3: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सोमवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन राग शुद्ध कल्याण।

आप सुन रहे थे सोमवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन राग शुद्ध कल्याण। इसी के साथ सोमवासरीय संगीत सभा अब यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आशा फिल्म के इस गीत को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, हेमलता की आवाज़ में। फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश नमक हलाल फिल्म में आप सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज़, बप्पी लहरी का संगीत और प्रकाश मेहरा के गीत।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

0: चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते मेरे साथ जलते जलते।
1: पाकीज़ा फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, गुलाम मोहम्मद का संगीत और कैफ भोपाली के गीत। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म है साहेब बीवी और गुलाम। संगीत हेमंत कुमार का है और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का

0: दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great